0: Now it is very clear, 13 crore voters have been deleted. This is a lame excuse and the BJP should stop making lame excuses. If they are meddling with our elections and if their leadership is making the election commission do this, then it is an act of treason and they should be aware of it. And they should take ownership. If they are doing it, then why can't they say it? What are they scared of? They are doing an illegal act. How many years has it been that they have been rigging elections? Naturally, they are so overconfident all the time.
1: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया है, जिस तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की गई उसमें बिंदुवार उन्होंने स्पष्ट किया है कि कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों में परस्पर विरोधाभासी मत निर्वाचन आयुक्तों के हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया का ये एक लोकतांत्रिक हिस्सा है और जब निर्णय लिए जाते हैं तो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये तो आयोग ने कहा, मैं तो कहता हूं कि अगर कई मसलों में बहुमत के आधार पर भी फैसले होंगे।

0: देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधू जी और जोशी जी आ गए, अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Hello and welcome to the latest edition of It's Gone Viral. In the next half an hour, we will be showing you some of the images and videos that have gone viral last week and created some buzz.
1: आज मैं बना हूँ लड़की ये देखने के लिए दिल्ली में रात को लड़कियाँ कितना सेफ है और एंड में जो मेरे साथ हुआ वो आपने सोचा भी नहीं होगा। शुरुआत करी लड़की की ड्रेस पहनकर और फिर मेकअप के लिए बैठ गया। मेकअप कराते कराते मुझे शर्म आने लगी और फिर डांट भी पड़ गई।
2: खोला
3: अंकल, आधी खोल। A late night scooter ride through Delhi became an unsettling experiment when a content creator disguised himself as a woman to experience the city after dark.
1: पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे गया तो ये दोनों लगातार घूरे जा रहे थे जैसे कि मुझे खा जाएंगे। भैया भी शॉक हो गए जब उन्हें पता लगा मैं लड़की नहीं लड़का। और ये देखो इनको साइकिल पर है लेकिन पूरा दम लगा दिया अच्छे से घूरने के लिए। और ये दोनों मुझे देखकर रुक गए और वेट करने लगे और फिर पीछा करके मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक और आदमी मेरे पास आकर कुछ कुछ बोलने लगा।
3: He said the ride involved prolonged stares, unwanted approaches and vehicles repeatedly getting in his way.
1: थोड़ी और आगे गया तो ये दो ऑटो वाले मेरे सामने जानबूझकर रोक रहे थे। एक ऑटो वाले ने तो मेरे दोस्तों को वीडियो बनाते हुए देखा इसलिए वो पीछे रुक गया। लेकिन ये दूसरा ऑटो वाला बार बार अपना ऑटो लेके मेरे पास आ रहा था।
4: चला गया घूर के।
1: कुछ देर बाद मेरा दो गाड़ियों ने भी पीछा। ये पहली गाड़ी और ये दूसरी गाड़ी ने भी काफी देर तक पीछा।
5: भाई ये बहुत स्कैरी हो गया है, अब हमें लग रहा है कि बंद कर देना चाहिए इसको। पिछले दो घंटे में इतना डिस्गस्टिंग हो गया ना मेरे लिए। साइकिल वाला, बाइक वाला, ऑटो, कार सबने पीछा करने की कोशिश करी है। भाई बिल्कुल सेफ नहीं है लड़कियों के लिए रात में अकेला निकलना। सच में लड़कियों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है।
6: बबुआ के बुआ होई छेना के मिठाई, बबुआ के बुआ होई छेना के मिठाई।
3: A tea seller on a train went beyond serving chai when he spotted an exhausted mother struggling with her crying child after a medical trip to Gorakhpur. He first offered her tea before taking it upon himself to entertain the little one.
7: आज मैं दिखाऊंगा जापान का एक पब्लिक टॉयलेट कितना फ्यूचरिस्टिक है।
8: हाय टॉयलेट, प्लीज टर्न ऑन द सिंक।
3: Mumbai content creator Sarthak Sachdeva was left amazed by a Japanese public toilet packed with high-tech features.
7: खुल जाता है।
9: भाई मतलब सिर्फ आपके वॉइस कंट्रोल से यहाँ इतने सारे कमांड्स लिखे हैं जिससे कि आप बिना छुए पूरा टॉयलेट यूज कर सकते हो जिससे कि जर्म्स भी नहीं फैलते। हाय टॉयलेट।
3: From turning on the tap to unlocking the bathroom door with a QR code, the futuristic setup has left social media equally surprised.
7: आप एक कमांड दे सकते हो। ऐसी चीज लाइफ में कभी नहीं देखी थी और सच में जापान फ्यूचर में जी रहा है।
3: Driver vlogger Rajesh Ravani showcased a truck that looks more like a customized home on wheels. The cabin features a sofa-like seat, a 180-degree rotating driver's chair, and motorized blinds, giving his workplace a surprisingly luxurious makeover.
10: Let me introduce to you my 81-year-old grandmother. She is a businesswoman, an avid traveler still in the age of 81.
3: An 81-year-old grandmother from Gurgaon is showing no signs of slowing down.
10: Dadi, tell us about life recently. What have you been up to? Have you been traveling?
11: Yes, I have been to Alaska for my cruise. I have really enjoyed it.
10: At 81 years old?
11: Yeah.
3: From cruising to Alaska to running her own business and maintaining a packed social calendar, her active lifestyle has left her granddaughter completely amazed.
10: What would you say?
11: So that they should enjoy their life, they should work hard and eat good food. At the same time, they should look after themselves.
10: Cheers, Dadi.
11: Cheers.

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए, वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: and welcome. You're watching In the Club. I am Susan. India has two shots at the International Emmys this year, and they couldn't be more different. Veer Das is back in the comedy race with Full Volume, while Real Kashmir Football Club has made it to the drama series shortlist. The nominations are out, and here's a look at the Indian contenders and the biggest titles in the global race in a special report by Sana Fazim.
1: एक-एक करके सब लड़के क्लब छोड़ ये टीम स्पोर्ट है कोई सोलो शो नहीं चल रहा है
2: यू हैव एक्टिवेटेड द इविल आई इज इल विशर्स
3: टू इंडियन टाइटल्स
4: छह महीने हैं तुम्हारे पास ब्रिंग फुटबॉल बैक टू कश्मीर
2: बट दे डू नॉट डू इल टू यू दे जस्ट कैजुअली विश इल अपॉन यू
5: तो जाओ और कश्मीर
3: टू वेरी डिफरेंट एमी स्टोरीज
5: उस सपने के लिए जो हम सबको जोड़ता है कम ऑन
3: Veer Das is back in the International Emmy race, and this time it is Full Volume that has made the cut in comedy.

ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।

0: आज उत्तर प्रदेश का विकास सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, करीब करीब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी है, विपुल जल संपदा है, भूमि है, मेहनती कारीगर है और अब उद्योग के लिए अच्छा वातावरण भी बना है। उद्योग के लिए अच्छे वातावरण से मेरे मतलब है, एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। निवेश के माहौल की प्राथमिक शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, दूसरा इसके लिए अनुकूल औद्योगिक नीति बने, तीसरा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हो और चौथा फैसिलिटेट करने के लिए उत्साह हो। आज मुझे लगता है कि चारों चीजें उत्तर प्रदेश में मौजूद है, इसलिए यहां पर निवेश का माहौल बना है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
2: Traditionally, when do an open surgery, so we have to open the chest. हम इसको काटते हैं बीच में से. Then we split it up and go inside the heart and then perform the surgery. It alters your physiology. आपकी जो mechanism है, सांस लेने की, आपकी movement की, उठना बैठना, इस सारी चीजें जो है वो change होती है. If I do the same thing without opening the chest, patient have no pain, no trauma, no blood loss. Now robot has gone to that level, I can do the surgery in the morning. And patient can be having coffee in the evening.
3: What are you
2: saying? Yes. When we do an open surgery, the cut is around 10 to 15 centimeters in front of the chest. There should not have a cut in the chest, according to me. That's an injustice. You may feel normal, you may look normal, but that stigma is always there. So you see the amount of loss you have got from the whole family. So much of blood loss, so much of trauma. And the top of that whole thing, the patient who is going through it, he's a big psychological impact on his life. So he thinks that my chest is open, I'm no more, useful for anyone. That has to change now. And mark my word, after 5 years, most of the laparoscopy will gone by. Sir, mujhe robotic surgery karana hai, kuch bhi ho jaye. They have a feeling in their mind that everything can be done robotically. Answer is no.
3: Kin kin diseases ke liye ya kin kin operations ke liye aap bolenge we must use a robotic arm? रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये तो नहीं है ना कि रोबोट्स ही सर्जरी कर रहे हैं।
2: यू आर द कैप्टन ऑफ दैट शिप और दैट एयरक्राफ्ट। यू हैव दे हैव टू लिसन टू यू। यू रन लाइक एन एयरबस A380।
3: कैन आई आस्क यू अ वेरी सिली क्वेश्चन?
2: यस।
3: बट आई एम श्योर दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एवरीबॉडीज माइंड। अगर आप रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा? टेल मी एग्जैक्टली व्हाट द रोबोट लुक्स लाइक। आप कैसे चला रहे हैं? आपने एयरबस का एग्जाम्पल दिया, मेरे दिमाग में ट्रांसफॉर्मर्स टाइप का कुछ चल रहा है। Hello and welcome to Doctor vs Internet. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. Today we are going to talk about a subject that is of huge fascination, one topic on which a lot of innovation is happening in the country. I'm talking about robotic surgery and robotic surgery specifically in the area of heart. Now, you must have seen these ads all around. Doctors are talking about it, but patients are a little apprehensive. Jo aapke sawal hote hain, how to decide if you want to go for a robotic

0: करता है एंड व्हाट हैपेंस इफ द लाइट सडनली गोज अवे, व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ. ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋत्विक राज भुयन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर. He's a senior director of cardiothoracic and vascular surgery and also the lead of robotic cardio surgery at Fortis Escorts. Thank you so much for joining us, sir. You have loads of experience in understanding and playing around with robots. So this is going to be a fascinating where I am looking forward to learn a lot more. And my real hope with this podcast is ki jo log ise dekh rahe hain, jinke samne ye sawal aata hai ki aapko robotic surgery leni hai ki nahi leni hai, unko ye decision lene mein hamara podcast help. So are you ready?
1: Yes.
0: So pehle, why don't you start by telling us a little bit about what exactly is a robotic heart surgery? And robotic surgery ka matlab ye to nahi hai na ki robots hi surgery kar rahe
1: hain. Thank you, Sunal. I think aapne bahut sara sawal ek saath puch liya.
0: Ji.
1: So let us answer one by one. So Sunal, before you understand how robot performs a surgery, we should know फॉर लोगों की जो नॉलेज के लिए फॉर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वी शुड नो व्हाट ए हार्ट सर्जरी मीन्स एंड यूल बी सरप्राइज टू नो दैट हार्ट सर्जरी इज नॉट ए वेरी ओल्ड स्पेशलिटी इट्स वेरी रिसेंट बिकॉज आवर सर्जरी स्टार्टेड ओनली 1960s तक कोई भी हम हार्ट की सर्जरी सब मर जाते थे ऑल ऑफ देम यूज टू डाई व्हाई यू आस्क मी बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज नो मटेरियल no process to stop the heart. That's the biggest contribution to the mankind that we have the heart-lung machine in 1958. Yes. That means we can stop the heart safely and perform the heart surgery. Suppose aapke heart ke andar, kisi ke heart ke andar, ek suraag hai. Usko hum kaise band karenge? How to close this heart? For that, I have to stop the heart. So that technology only came in 1958, 1960. From there on, we have progressed very rapidly. There's no doubt about it. Bypass surgeries came, valve surgeries came, people have become celebrities. You know, so many celebrities have come up like a big bypass. Then heart transplant came. Yes. We can even change people's heart, you know. That also came in 1967. So these are very important. In between, what was happening that we have observed one very small and very important observation that when we open the chest, suppose when you open the chest for open heart surgery, when you cut your breastbone in front of the chest, it alters your physiology. आपकी जो मैकेनिज्म है सांस लेने की आपकी मूवमेंट की उठना बैठना इस सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती है तो दैट वाज द टाइम व्हेन साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग एल्स कैन वी डू इट सेपरेटली कैन वी डू इट डिफरेंटली कैन वी डू इट विदाउट ओपनिंग द चेस्ट देन द अराउंड 1990s वी हैव स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी वर वी हैव स्टार्टेड डूइंग सर्जरीज विदाउट ओपनिंग द चेस्ट The same bypass operation, same valve replacement, same different types of hearts, hole in the heart, tumors of the heart, all these surgeries have people have started doing from the side without opening the chest. That is the beginning.
0: Explain that.
1: Yeah.
0: Without opening the chest means?
1: Yeah. So traditionally when do an open surgery, so we have to open the chest. There's a bone in front. If you touch your in between breast, you'll find a bone. Yeah, this tough structure is called sternum. This bone ko hum haddi ko bolte sternum bolte. Hum isko kaatte hai beech mein se. Then we split it up. And go inside the heart and then perform the surgery like a bypass surgery, valves operation, heart key defects, or so on and so forth. So when you open this up, your whole mechanism of breathing and all these things, becomes altered. I'm not saying that altered for life. Yeah. So some of the people are not fit for this. For example, badly diabetics, very frail, कोई cancer से पीड़ित है, पहले स्ट्रोक हो चुका है बहुत सारे कंडीशन ऐसे ओबेस है बहुत एंड हैवी फीमेल्स जिसकी मोबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है सो वी हैव फाउंड दैट व्हेन वी कट देम वी मेक देम ए मोर डिजीज्ड देन बिकम बेटर राइट सो ड्यूरिंग दैट टाइम द सर्जन्स द साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड थिंकिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वाज विदाउट ओपनिंग द चेस्ट द नॉन स्टर्नोटोमी और नॉन ओपन हार्ट सर्जरीज देन वी स्टार्टेड इवॉल्विंग ऑन दैट एरिया स्लोली एंड स्लोली And I think robot is an extension of that. तो पहले हमने इसको किया ओपन किया ओपन सर्जरीज हमने कर लिया फिर इसका जब हम पूरा ट्रेन हो चुके थे वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन डू ओपनली एनीथिंग देन वी हैव मूव टू दिस साइड द विदाउट ओपनिंग द चेस्ट द सेम बाईपास सेम वेल्व वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द साइड नाउ व्हेन वी बिकम एक्सपर्ट ऑन दैट ऑल्सो नाउ यू थॉट व्हाई टू ओपन फ्रॉम द साइड ऑल्सो डोंट एनी डू एनीथिंग मेक सम स्मॉल थ्री पोर्ट्स एंड डू द सर्जरी देन द रोबोटिक गेम्स बिकॉज एज यू विल सी वॉट रोबोट डज बेसिकली इट रिड्यूसेज द

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधू जी और जोशी जी आ गए, अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है, कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है, मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं, बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा, तो ये गलत है।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए, वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: Now it is very clear, 13 crore voters have been deleted. This is a lame excuse, and the BJP should stop making lame excuses. If they are meddling with our elections, and if their leadership is making the Election Commission do this, then it is an act of treason and they should be aware of it. And they should take ownership. If they are doing it, then why can't they say it? What are they scared of? They are doing an illegal act. How many years has it been that they have been rigging elections? Naturally, they are so overconfident all the time.
1: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया है, जिस तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की गई, उसमें बिंदुवार उन्होंने स्पष्ट किया है कि कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों में परस्पर विरोधाभासी मत निर्वाचन आयुक्तों के हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया का ये एक लोकतांत्रिक हिस्सा है, और जब निर्णय लिए जाते हैं तो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये तो आयोग ने कहा, मैं तो कहता हूं कि अगर कई मसलों में बहुमत के आधार पर भी फैसले होंगे।

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में फोर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है, वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए, अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: जमुई, समस्तीपुर, बांका, दिल्ली. डिफरेंट क्राइम्स, वन कॉमन फियर, वुमेन नॉट बीइंग सेफ इन पब्लिक स्पेसेस. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है. उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं.
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था. कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब गरीब बातें कर रहा था.
3: ऑल ऑफ दिस इज a lot normalized and it's not normal. Like for any girl that we are walking, a man is staring, that is a crime. Eve teasing, stalking, even the kind of cyber crimes that are happening all over the university. And men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's, indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
0: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the DUSU election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दिए उन्होंने. और मुझे, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, तो मुझे बोल रहे चुप रहे, ज्यादा मत बोल, मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए. और वहां जाके गंदे गंदे इशारे,
5: वो इशारे आपकी तरफ किए,
4: हमारी तरफ, मेरी तरफ ही इशारे किए थे. हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए. फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है. मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए, सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों.
0: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic: better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी, मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
6: हम लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए. तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है, और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है.
8: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाएं,
9: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आते हैं. उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गाँव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया.
0: From Jamui to Delhi, the geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
10: Years and after years, nothing really has changed on the ground, and the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
11: On that note, viewers, we're wrapping up the bulletin right here this hour. But do stay tuned to India Today as we keep bringing you all the latest developments right here through the day. Thank you for watching. This is Shreya Kumar.
5: are watching India Today.

0: The Chief Election Commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the Chief Election Commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the election commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: देखिए राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो आप चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं, घुसपैठ हैं या नहीं, ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।

0: शी नेवर क्वेश्चंस दैट बिलीफ, दैट इज ममता. और कहीं ना कहीं आप देखो तो तमन्ना रियल लाइफ में वैसे कहीं ना कहीं ये लोग ऑर्गेनिक फिट थे इस कैरेक्टर्स के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी स्टेड देयर.
1: जब भी यहाँ चोट लगती है और मैं अपना होश खो बैठता हूँ, कुछ अजीब सा महसूस होता है.
2: एंटरटेनमेंट ब्यूरो, इंडिया टुडे.
3: जब भी इन मायावी शक्तियों का प्रकोप मानवता के लिए खतरा बनेगा, तब तब तुम्हें आना होगा. किसी भी युग में तुम्हें आना होगा वीर.
4: फ्रॉम मेकिंग वेम्बली हिस्ट्री टू ब्रिंगिंग दैट सेम पंजाबी एनर्जी बैक होम, Diljit Dosanjh is ready to make Ahmedabad his next big stage. With the Aura India Tour now headed to the Narendra Modi Stadium, the countdown to one of the biggest stadium concerts of the year has officially begun. Take a look at this special report.
5: From making Wembley history to bringing that same Punjabi swagger back home, Diljit Dosanjh is now ready to turn Ahmedabad into the next big aura. After making history as the first Punjabi artist to headline London's Wembley Stadium, Diljit is now set to take over Ahmedabad's Narendra Modi Stadium on November 21 as part of his Aura India tour. And for fans who have been waiting for that ticket drop, the countdown starts now. The pre-sales begins on September 28 at 12 noon, exclusively on BookMyShow. And if you miss the pre-sale, the general ticket sales opens on October 1 at 2 p.m. So yes, Diljit fans, the countdown has officially begun.
6: One more good news.
5: The Ahmedabad show was first announced by Diljit during his historic Wembley concert earlier this month.
6: Ek gore group ne onu sell out kita. Respect for them. Bahut bahut unhan nu mubarakah. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਟੀਮ ਚਲੋ ਬਜਾਵਾ. ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 21st of November, ਔਰਾ ਇੰਡੀਆ ਥਰੂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ.
5: While talking about performing at the Narendra Modi Stadium, Diljit gave a shout out to Coldplay, who had previously sold out the Ahmedabad venue. And this is not just another stop on a concert calendar.

0: The official event listing describes the Ahmedabad show as a homecoming celebration, bringing together Diljit's biggest hits, Bhangra, and a large-scale stadium production. So yes, the stage is massive, the aura is bigger, and Diljit is ready to bring it all back home. With Pranjali Sethi, Entertainment Bureau, India Today.
1: Srikanth Tiwari could be heading for his biggest mission yet, and this time, it may not be on the small screen. Reports suggest The Family Man could be making its way to theatres, with the makers exploring a film around the popular franchise. But there's a lot that needs to happen before Srikanth's next chapter takes shape. Take a look.
2: भाग तू तुड़ी के देखता हूँ कितनी दूर भागता है
3: और ये हैं सीनियर एनालिस्ट श्रीकांत तिवारी
4: कल करे सो आज करे सो अब खिस रहा है रोज तू फल मिलेगा कब
5: फ्रॉम स्ट्रीमिंग स्क्रीन्स टू द बिग स्क्रीन पॉपुलर इंडियन सीरीज आर फाइंडिंग न्यू वेज टू एक्सपैंड देयर वर्ल्ड्स
6: ही हैज टू स्टेप अप एंड डू दिस जॉब जब देश सुरक्षित है तो हमारे परिवार सुरक्षित है हम सब सुरक्षित है
7: देखे शाम को मिलेगा
8: मैं भी चेन्नई में हूँ एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंसा हुआ
7: हूँ बताना क्या हो रहा है उधर
5: And now, another fan-favorite franchise could be preparing for that much-awaited transition.
9: FOMO, LOLO, ROFLO.
10: Our intel suggests there's an unexpected coalition between the ISI and the rebels. Bata karo in logon ka plan kya hai?
11: I think we are under attack.
5: Srikanth Tiwari could soon be taking his covert missions beyond the small screen, as The Family Man is reportedly being considered for a theatrical adaptation. While the project remains in its early stages, the idea has reportedly been in the works for some time, with the makers now actively exploring a story that could take the popular franchise into cinemas.
12: But you cannot become wise from others' wisdom.
13: मुझे भी कोट आता है। कभी-कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो जीता वही सिकंदर इसकी
14: आपका कोड नेम भी है क्या लाइक टाइगर पैंथर लायन
15: इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा सर्कस में नहीं
16: सर आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है
17: आई एम अ सस्पेक्ट
18: Srikanth Tiwari is now an officially wanted criminal.
5: However, before the film takes shape, the focus remains on season 4, whose basic storyboard is ready. If all goes well, shooting is expected to begin in early 2027.
19: I'm the one that runs the circus. I'm looking for someone jo Northeast India ko bahut acche se jaante hai.
20: इसका बहुत बड़ा ड्रग्स मतलब
21: औकात बढ़ानी चाहिए अपनी लेकिन भूलनी नहीं चाहिए
5: Created by Raj and DK, The Family Man follows Srikanth Tiwari, a middle-class husband and father who secretly works for an intelligence unit handling national security threats.
22: तो अभी कौन सा सेंचुरी मार रहा है तू?
5: Across three seasons, the series has built a world of espionage, family dynamics, and evolving national security threats.
23: गलत फंस गया यार. साला अभी जाके मेरी डेटिंग का सीन फल फूलने लगा था, सब खत्म. थोड़ी देख ले.
5: With Manoj Vajpayee's Srikanth and Shahrukh Hashmi's J.K. Talpade becoming fan favorites. If the film takes shape, the Manoj Vajpayee starrer could become the latest Indian streaming franchise to make the leap to cinema.
23: एक बार यहाँ से निकल गया ना J.K., मैं तेरा स्वयंवर रचाऊंगा.
24: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली
25: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते यही गद्दी का नियम है
5: Following the recent example of Mirzapur, which expanded its universe with Mirzapur the movie.
26: अरे ये क्या तेरा हीमोग्लोबिन कम है कारे देख देख
0: कम खून निकल रहा था।

ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खास तौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना, आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे। पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।

0: The Chief Election Commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the Chief Election Commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the Election Commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: देखिए राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो अब चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ है या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।

0: This is the group of friends on the safety and security of shipping. Now, you will all be aware that in recent months, the world has seen unacceptable attacks on commercial shipping and merchandise. We are legally and morally independent. These have occurred from the Strait of Hormuz, the Red Sea. We believe that there can be no justification for such violence and loss of life. Put simply, these attacks must stop. As a major source country for seafarers, India has joined hands with Nigeria, boasts the largest shipping registry by tonnage.
1: Desh bhar mein SIR ke zariye 13 crore se zyada voters ko वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB संधु जी और जोशी जी आ गए, और वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया। सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: Now it is very clear, 13 crore voters have been deleted. This is a lame excuse, and the BJP should stop making lame excuses. If they are meddling with our elections, and if their leadership is making the Election Commission do this, then it is an act of treason and they should be aware of it. And they should take ownership. If they are doing it, then why can't they say it? What are they scared of? They are doing an illegal act. How many years has it been that they have been rigging elections? Naturally, they are so overconfident all the time.
1: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया है, जिस तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की गई, उसमें बिंदुवार उन्होंने स्पष्ट किया है कि कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों में परस्पर विरोधाभासी मत निर्वाचन आयुक्तों के हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया का ये एक लोकतांत्रिक हिस्सा है और जब निर्णय लिए जाते हैं तो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये तो आयोग ने कहा, मैं तो कहता हूं कि अगर कई मसलों में बहुमत के आधार पर भी फैसले होंगे

ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।

आज उत्तर प्रदेश का विकास सबसे बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, करीब करीब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी है, विपुल जल संपदा है, भूमि है, मेहनती कारीगर है और अब उद्योग के लिए अच्छा वातावरण भी बना है। उद्योग के लिए अच्छे वातावरण से मेरे मतलब है, एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था, 2017 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री बने, आज यूपी भर में माफियाओं को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया और इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। निवेश के माहौल की प्राथमिक शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, दूसरा इसके लिए अनुकूल औद्योगिक नीति बने, तीसरा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हो और चौथा फैसिलिटेट करने के लिए उत्साह हो। आज मुझे लगता है कि चारों चीजें उत्तर प्रदेश में मौजूद है, इसलिए यहां पर निवेश का माहौल बना है।

0: His mother used to be a homemaker, but the battle against cancer has changed their lives forever. Another villager from Akshay's village, Petwada, 32-year-old Harshad Makwana, is battling esophageal cancer.
1: खाने में तकलीफ हो रही थी इसके लिए हमने इलाज ढोल अहमदाबाद में करवाया किसी की मदद नहीं मिली और एक सारा खर्च मेरे को 8-10 लाख का उठाना पड़ा कि ये केमिकल युक्त पानी से ही हमें सबको कैंसर हुआ है कहें कि हमको कुछ व्यसन ही नहीं है मेरे घर में तीन लोग को हुआ था वो सभी लोग को पेट का ही होता है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पानी से ही होता है ना कि पानी के दूसरे तो कुछ वो सबको भी व्यसन नहीं था.
0: Harshad had already lost his elder brother and mother to cancer. He said around 15 lakh was spent on his brother's treatment shortly before his death. They believe the water laden with industrial discharge from the nearby factories is the reason for the cancer. It's the same story in a different house, recounting the fight repeatedly from all angles. Naresh Bhai's 51-year-old father, Bhagwan Makwana, developed oral cancer 6 months ago. He had no history of substance abuse.
2: मेरे पापा को तो अभी छह मंथ हो गया इलाज हो गया है अभी तो भी दवाइयाँ चल रही है 15 दिन एक मंथ में चेकअप करवाने ज्यादा है 15,000 से 20,000 खर्चा होता है पिता को एक ऑपरेशन का 4 लाख का खर्चा हुआ है.
0: 2 months later, Naresh Bhai's mother, Vilas Makwana, was diagnosed with cancerous tumor in her stomach.
2: My mother ko bhi 2 months abhi hone wale hai. Unko andar pet mein gaant ka operation ke tha wo cancer ke gaant ka operation kiya tha. Kharcha kisi ne diya nahi hai, koi sanstha mein nahi diya, sanstha ne diya nahi hai. Gehne bech diye aur jo hamari zameen thi, wo kisi ko pahade ko bech ke humne wo ilaaj karwaya. अभी ये पानी गांव में आ रहा है ना वो बोले तो केमिकल युक्त आ रहा है वो पानी पीने लायक नहीं है कोई चीज बनाने के लायक नहीं है इनकी वजह से जो पानी के अंदर जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में आते नहीं है दूसरे बैक्टीरिया आते हैं इनसे इनकी वजह से शरीर को खराब करता है और कैंसर की बीमारी होती है.
0: नरेश भाई's grandfather had also suffered from laryngeal cancer and died of the disease 8 years ago. Much like Naresh Bhai, Ravindra Lalji Bhai's father developed throat cancer 4 years ago.
3: Mera papa ka naam Lalji Bhai hai. Unko cancer hua tha. 4 saal ho gaye. Kharcha to 3-3.5 lakh rupiya hua tha. Abhi to RO ke paani peete hai tab se.
0: The water purifier installed specifically for the villagers near the village borewell cost them 5 to 10 rupees to collect water. Kajal's father Manu Bhai did not survive to enjoy this facility. She lost her father in the battle against throat cancer in 2022.
4: मेरे दादाजी को कैंसर की बीमारी थी वो लगभग 5 सालों से थी वहाँ हम कितना भी खर्चा किया पर वो बच नहीं पाए क्योंकि हमने हमारा घर का सदस्य गुमाए हैं तो हम उनकी पीड़ा जानते हैं. हमारे घर में ऑक्सीजन के बाटले खुद हमने रखे थे वहाँ बाटले रखने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाए.
0: The treatment was costly for a family that depended on farming.
4: हमें पानी से ही हुआ था कैंसर. हम आरो का पानी लाते थे वह पानी भी हम पैसे देकर लाते थे लेकिन हम वापरते हैं तो उला पानी पर वो पानी अच्छा नहीं आता. फिर भी मेरे दादाजी का खर्चा 8 लाख से ज्यादा हुआ है लेकिन फिर भी हम बचा नहीं सके.
0: 35-year-old Gautam Makwana of Petwada died of cancer in June 2022, leaving behind his wife and 2 children.
5: मेरे पति को कैंसर हुआ था. एक बार हमने ऑपरेशन करवाया मगर कुछ फिर नहीं पड़ा. फिर हमने गहने बेचकर पहला ऑपरेशन कराया फिर भी दूसरी बार ऑपरेशन कराना पड़ा तो हमने हमारा खेत बेचा. तीन साल हमने उनके कैंसर की होली कराई. 2022 में उनकी मृत्यु हो गई।
0: दे डिड एवरीथिंग दैट दे कुड टू सेव देयर लव्ड वंस।
6: जे भी प्रयत्न कर जो बेन जीव।
0: दीस विलेजर्स आर स्टिल ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू फाइट दिस कोलोसल बैटल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एट द प्रोटेस्ट साइट देयर आर विलेजर्स with visible skin infections triggered by toxic reactions.
7: बेटावाड़ा में ज़्यादातर patient skin के जो होते हैं उसमें दादर या फिर जो खुजली या एक दूसरे के टच में आने से फैलते हैं या फिर जो किसी एलर्जेंट के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, उसके भी पेशेंट मुझे देखने को मिलते हैं। मुख्य वजह तो केमिकल युक्त पानी या फिर पेस्टिसाइड उसके कांटेक्ट में आने से भी मतलब हो सकता है एलर्जी।
8: किसी किसी को तो सालों लग जाते हैं, 2 साल जैसा जैसे ट्रीटमेंट होती है कि कुछ आते हैं डॉक्टर, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 6 महीने का कोर्स 12 महीने का कोर्स ऐसा आता है और इसमें तो 10,000-15,000 जैसी जैसी सैलरी हो वैसे करते हैं।
9: हमें भी इस चामड़ी का रोग है, वो वहाँ मेरे पापा जी है उसको भी चामड़ी का रोग हुआ है। माथे का बाल गिरने का भी समस्या ज़्यादा है, उसका खर्च मेन मुझे ये एक जगह से नहीं हुआ है, सारे शरीर में हुआ है। तो कितनी बार मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर कहा तुम्हें बहुत ज़्यादा खर्च होगा।
0: Hundreds of residents of all 5 villages have accused factories operating near their homes of releasing chemical-laden water into drains, which they say eventually contaminates groundwater and village borewells. For 15 years, they have made repeated appeals to the Panchayat, Municipality, Gujarat Pollution Control Board, Local MLA, District Administration, but all have failed to resolve the issue.
10: उसका उपाय एक ही है कि केमिकल फैक्ट्रियों का अभी गई काल जो अगले दिन यहाँ पे नोटिस दिया है सब 5-5 फैक्ट्री को कि भी आपका एक भी बूंद पानी अगर बाहर केमिकल वाला आएगा तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। स्ट्रिक्टली बोला है मैंने कि साहब ये बंद कर दो, बहुत बात हो जाएगी। पानी बंद होने के बाद यहाँ मेडिकल टीम जाएगी, सबको कैसी तरह से पानी पीना है ना। आरओ का प्लांट, आरओ वहाँ गाँव में आरओ का पानी भी मिल रहा है, गर्म पानी भी मिल रहा है, सभी व्यवस्था तो है ही, लेकिन अगर जो भी आगे ज्यादा किसी को तकलीफ ना हो कोई शारीरिक, वो पूरा पक्का ख्याल रखा जाएगा। सबकी जिम्मेदारी हमारी है और हम ही काम करेंगे। यहाँ से मेडिकल टीम भी जाएगी, वो जो सूचन करे ऐसी मेरी गांव वाले को विनती है कि आप भी जो डॉक्टर की सलाह दे उस तरह से काम करो। तो केमिकल युक्त पानी 100% बंद कर रहे हैं, मैं गाँव वाले के साथ हूँ।
0: They also alleged that 5 factories continue to operate in the area. India Today reached out to few of them.
11: The 4 villages of the Dholka Taluka of Ahmedabad are facing the severe issues due to the polluted or the contaminated water from more than 15 years. As per the villagers, they are claiming that they are getting the contaminated water due to the STP plant of the Dholka municipality and as well as the polluted water from the nearby industrial companies which are sending the water without treatment. They are not treating the water, the chemical water, and due to which their borewells or their drinking sources have been contaminated and they are facing this issue from more than 15 years. They are not getting any kind of relief or the help from these industrial companies. So that's why they are agitating from more than a month and they are reaching to the collector of Ahmedabad. They are claiming that there must be some kind of actions taken against these companies or the persons who are involved in this kind of activity, and that's why they are agitating from more than a month, and that's why government has taken such kind of actions. They have as per the minister, the CM has approved more than 150 crore for the expansion of the sewage treatment plant of the Dholka municipality, and furthermore they are going to put the CCTV cameras across this industrial area, so they cannot send any kind of the water without a treatment or any other chemicals in the nearby areas. Villagers are agitating for the movement. They are not relieved with this statement. They are still agitating for furthermore, and they want strict actions from the government.
12: कारण के
0: Protesting villagers claim municipal wastewater and factory effluents are discharged into the same drain. The villagers said the discharge of chemical-laden water has stopped since the protest began, but claimed that such water was being released into the drains until around 15 days ago. They also alleged that factories sometimes release the water under the cover of darkness. The protesters said a GPCB team has collected water samples, but the reports have repeatedly shown nil contamination. They also said the district collector visited the area after learning about the protest, but claimed that no concrete response followed.
12: कितनी भी बार आगे रजुआत किया, आवेदन पत्र भी दिया मामलेदार को, प्रांत साहब को, हमारा यहाँ के स्थानिक धारा सभ्य केडीसी डाबी, उनको भी बात किया, लेकिन हर बार वो वही बोलते हैं कि हम बंद कर देंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ बंद नहीं हुआ, और बाद में गांव लोग वाले सब मजबूर हो गए हैं, तो अभी उसको धरना पे बैठना पड़ रहा है।
13: बी ए वास्मो है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, वो कैंसर सोसाइटी वाले, वो उसका निदान करने के बाद मालूम पड़ेगा। पीने का पानी गाँव में से मिल रहा है, और पीने का पानी का बैक्टेरियोलॉजिकल जो टेस्ट करना है वो हम कर रहे हैं, और शुद्ध पानी मिले, जो क्लोरीन की टेबलेट है वो भी हम दे रहे हैं, और वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पीने के पानी में अभी तक।
0: After sitting and waiting for someone in the administration to look up and respond, the state environment minister has promised to look into the issue and resolve it.
14: धोलका के चार विलेजों का जो पोल्यूशन और स्वेच पानी की वजह से वहाँ डिसीज वगैरह हो रहे हैं, ये कंप्लेंट थी, इसके लिए मैंने एक यहाँ वहाँ के लोकल एमएलए किरीट सिंह डाबी, ये सभी गांवों के सरपंच और उनके लीडर्स, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और गुजरात अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर थे उनके साथ मैंने मीटिंग रखी थी, और ये कंप्लेंट के बारे में डिटेल में चर्चा की गई, तय किया गया कि जो भी वहाँ फैक्ट्री है वहाँ हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे, उसकी जांच भी करेंगे, ग्राउंड वाटर की भी जांच करवाएंगे, और जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन है अगर कहीं पोल्यूशन है तो उनके सामने लिया जाएगा। भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने भी सूचना दी है कि जल्दी से वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाया जाए।
0: The road to justice is not a straight one. Neither is it a smooth one. The serpentine character of this track requires consistent follow-up and determined persistence to make the system clean the contamination in life. These villagers of Dhokla district of Gujarat are sitting and waiting to make the system hear them, see them, and act for them.

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में फोर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज्य बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का, जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में
1: जी
0: होड़जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज्य बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: Now it is very clear, 13 crore voters have been deleted. This is a lame excuse, and the BJP should stop making lame excuses. If they are meddling with our elections, and if their leadership is making the Election Commission do this, then it is an act of treason, and they should be aware of it. And they should take ownership. If they are doing it, then why can't they say it? What are they scared of? They are doing an illegal act. How many years has it been that they have been rigging elections? Naturally, they are so overconfident all the time.
1: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया है, जिस तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की गई, उसमें बिंदुवार उन्होंने स्पष्ट किया है कि कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों में परस्पर विरोधाभासी मत निर्वाचन आयुक्तों के हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया का ये एक लोकतांत्रिक हिस्सा है, और जब निर्णय लिए जाते हैं तो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये तो आयोग ने कहा, मैं तो कहता हूं कि अगर कई मसलों में बहुमत के आधार पर भी फैसले होंगे

0: are watching India Today.
1: You're watching India Today. I'm Suresha Samant, and well, amid the growing claims of internal rift, the Election Commission of India has held a crucial internal meeting. This was attended by the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioner Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. The meeting that was held amid demands by opposition parties and the India bloc calling for the removal of the Chief Election Commissioner following claims raised in a media report. Addressing those allegations regarding centralization of powers, the Election Commission has said that its key decisions on the special intensive revision of electoral rolls had been taken with the unanimous approval of all three commissioners. Listen.
2: Bharat Nirvachan Aayog ki baithak aaj 26 September ko dopahar 3 baje Nirvachan Sadan Nayi Delhi mein hui. Aaj ki is baithak mein mukhya chunav aayukt Shri Gyanesh Kumar tatha chunav aayukt डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए। इन फैसलों की जानकारी हम आज के ईसीआई प्रेस नोट के माध्यम से दे रहे हैं। धन्यवाद।
3: ऑफ इंडिया सेज द मीटिंग दैट द इलेक्शन कमीशन हेल्ड विद द कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज नॉट रिगार्डिंग एनी पॉलिसी मैटर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया Neither related to any IT department work. ये election commission के किसी policy matter पर विषय नहीं था और न ही IT department संबंधित किसी विषय को लेकर वो cabinet secretary के पास गए थे. सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है।

0: इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में होर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: The Chief Election Commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the Chief Election Commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the Election Commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: देखिए राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो अब चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ हैं या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम कर रहे हैं।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: are watching India Today.
1: Welcome. You're watching India Today. I'm Suesha Sawant. A quick check of the top headlines we're tracking for you this hour. A midriff claims the Election Commission held its first meeting at Nirvachan Sadan. All three election commissioners attended the meeting. In a press statement, the poll body reiterated that all decisions were taken unanimously. Keralam Chief Secretary makes big allegations against CEC Ganesh Kumar, says Ganesh Kumar advised him to fight elections on BJP ticket post-retirement. Politics erupts over former Chief Secretary's charges. Tamil Nadu Water Works gets uglier. LOP Udayanidhi's talents moon jive at Chief Minister Vijay, says Chief Minister needs sea view to get into work mode. Chief Minister Yogi Adityanath met with Prime Minister Modi and JP Nadda in Delhi. The two leaders discussed preparations for the upcoming assembly elections and future strategies. Double gold glory for India. India's men's and women's kabaddi teams clinched gold at the 2026 Asian Games, taking India's gold medal tally to 4. Tejinder Pal Singh Tur also won silver medal in men's shot put. And well, amid growing claims of internal rift, the Election Commission of India has held a crucial internal meeting attended by the Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioner Subir Singh Sandhu and Vivek Joshi. The meeting was held amid demands by opposition parties and the India bloc calling for the removal of the Chief Election Commissioner following claims raised in a media report. Addressing allegations regarding centralization of powers, the Election Commission has said that its key decisions on the special intensive revision of electoral rolls had been taken with the unanimous approval of all three commissioners.
2: भारत निर्वाचन आयोग की बैठक आज 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे निर्वाचन सदन नई दिल्ली में हुई. आज की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे. आयोग ने आज इस बैठक में सर्वसम्मति से कई फैसले लिए. इन फैसलों की जानकारी हम आज के ईसीआई प्रेस नोट के माध्यम से दे रहे हैं. धन्यवाद.
3: ऑफ इंडिया सेज द मीटिंग दैट द इलेक्शन कमीशन हेल्ड विद द कैबिनेट सेक्रेटरी वॉज नॉट रिगार्डिंग एनी पॉलिसी मैटर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाइदर रिलेटेड टू एनी आईटी डिपार्टमेंट वर्क. ये इलेक्शन कमीशन के किसी पॉलिसी मैटर पर विषय नहीं था और न ही आईटी डिपार्टमेंट संबंधित किसी विषय को लेकर वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पास गए थे. सरकार के भिन्न भिन्न स्तरों पर चर्चा होती है तो उसी विषय पे चर्चा हुई है, मगर इस प्रकार उसे कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि असहमति के कारण चर्चा हुई. और सहमति वाले विषय में भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी में स्पष्टता के साथ यह बात सामने आई है कि जो SIR हुआ है वो SIR तीनों कमिश्नर के हस्ताक्षर, तीनों कमिश्नर के पूर्ण सहमति के साथ हुई है.
4: As far as I'm concerned, this is an incredibly grave assault on the functioning of Indian democracy. We're looking at a situation where, unfortunately, a large number of Indian citizens have been deprived of their democratic right of voting, which is a right guaranteed by the Constitution of India and by democracy. It's a very, very serious problem. This is not anything minor, routine. It's not political. It's not administrative. It is a fundamental, untenable, catastrophic assault on our democracy. And this is something we have to stand up against. We have to resist. There is no question anymore that our country is facing a very severe challenge.
1: And well, the key EC meet amid rift claims and what exactly were the decisions taken on Delhi and Maharashtra. SIR deadlines have been extended. So as far as Delhi is concerned, the deadline has been extended till the 30th of October to file any claims. In Maharashtra, the deadline to file claims has been extended till the 12th of October, and Goa BLOs are to conduct house visits for the left-out voters. And well, the political battle over the Election Commission is widening, with the opposition stepping up its campaign against CEC Gyanesh Kumar, while questions are now being raised even by some NDA allies. Here's that report.
5: The political battle over the Election Commission and the SIR exercise is entering a new phase. The India bloc is stepping up consultations over action against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. An India bloc meeting will be held on September 30th in Delhi. All top leaders of the India bloc are expected to attend the meeting. TMC General Secretary Abhishek Banerjee spoke with Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi over Gyanesh Kumar and alleged electoral irregularities. Even Mamata Banerjee and CPM's M.A. Baby held talks despite political rivalry, while letters have been sent out to other opposition parties including Aam Aadmi Party, BJD, BRS, DMK and TVK to join them in the fight.
6: Yes, I do agree with you. And let us sit together. Tarpor ami Rahul ji ko message patiyechi. Let us sit together. Ebong joto dur ami jani, amader party ebong Congress party mile Constitution Club book kora hocche. Agami 30 tarike Delhi te Indian Alliance meeting ache ei issue upor.
7: She was saying that she was speaking to Congress leaders about meeting of the India bloc, and I mentioned that India bloc is important. But it has to be India bloc plus the parties which are not there, opposition parties. They should also be brought together if they are willing to all that. She said yes.
8: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए बल्कि ये तो अन्याय है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे.
5: In fact, the CPM has also reached out to the Cockroach Janata Party, which plans a nationwide agitation from 2nd October. And the opposition is preparing an impeachment motion against the Chief Election Commissioner along with criminal proceedings. The push began on March 12th this year when opposition MPs sought Gyanesh Kumar's removal, citing alleged bias and lapses in special intensive revision. That notice was rejected. On April 24, 73 opposition MPs filed a fresh notice citing alleged proved misbehaviour, which is still pending. And now, amid fresh SIR concerns, another impeachment draft is being prepared. The BJP has hit back, accusing the opposition of joining hands for political gain.
9: Mamata Banerjee ko bulate to log baat karte wo baat nahi karti thi. आज मामला उल्टा है इसलिए वो बात कर रहे हैं उनको कि बुलाया जाए अब यहाँ रोल नहीं है तो वहाँ रोल प्ले करेंगे लेकिन वहाँ भी कौन है कहाँ है एनडी जोड़ कौन कहाँ है अब उसको ढूंढे जाके पहले आंदोलन कोई भी कर सकता है एक बार आंदोलन हुआ उसका नतीजे का निकला
10: कि कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपना अस्तित्व बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं अब ऐसे में ये सारे लोग कोई भी इशू पाते हैं तो उस इशू पर एक हो जाते हैं एकजुट होकर लड़ते हैं लेकिन जब असली लड़ाई का समय आता है तो सारे लोग भाग जाते हैं
5: बट दिस टाइम द एनडीए एलाइज आर आल्सो सीकिंग क्लैरिटी एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान सेज दैट ही विल नॉट डिफेंड एनीवन एंड वांट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एड्रेस द कंसर्न्स
11: अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है विपक्ष का काम है राजनीति करना आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे
5: The TDP claims special intensive revision was conducted transparently in Andhra Pradesh but wants the Election Commission to clarify the concerns. Union Minister and JDS MP HD Kumaraswamy has also jumped on the bandwagon seeking clarity over reported differences among the three election commissioners.
12: What is the ground reality? What is going on inside the Election Commission? The difference what we are watching in the media that what is the real fact that has to come out by these members. Because this important organization, autonomous body, why it has happened?
5: And then RLM chief Upendra Kushwaha too sought immediate EC clarification. From the opposition seeking Gyanesh Kumar's ouster to questions from NDA allies, the pressure on the Election Commission is clearly mounting. With Amit Bhadwaj in Delhi, Bureau Report, India Today.
1: Breaking news coming in IIT Bombay campus update, where victim Sahil Vakore's parents have announced a hunger strike at Azad Maidan from Monday as they seek justice and say that there must be an in-depth investigation into why their son committed suicide, where primer for site details and the timeline that is being matched by the cops of what had happened during those crucial hours from the time he was giving that examination to when he was caught also using AI inside the examination center when he left, and 1:25 p.m. is when he was in his hostel room. What happened during those crucial hours? Remember, police is trying to decode all those details through Sahil's phone. However, this is the data that has just come in. The parents who have been seeking justice have now announced a hunger strike at Azad Maidan from Monday. Sahil Vakore's parents will be sitting on a hunger strike. They have decided to go on a hunger strike, which will be at Azad Maidan in Mumbai from Monday, as they have raised questions over that particular professor at IIT Bombay. And Professor Dula, who continues to be under the scanner. Sahil was escorted out of the examination hall. Although the management continues to say, and those at the college stating that he was clearly told no action will be taken. But let me take this to my colleague Dipesh Tripathi, who is joining us on the broadcast. Dipesh, what more are you picking up from Sahil's parents, who have announced a hunger strike at Azad Maidan from Monday?
13: Sahil's parents were seeking permission for outside the IIT premises for the hunger strike, but the police denied that permission and they said that they can sit on a hunger strike in Azad Maidan of Mumbai. But after this, now from Monday onwards, the Sahil parents will be on a hunger strike. As per the High Court guidelines, no one can sit in a Azad Maidan after the 5 p.m. of a day and on Saturday and Sunday, due to which today and tomorrow Sahil's parents were trying to sit on the hunger strike, but the police denied permission due to the court orders. And from Monday onwards, the Sahil parents will be there on a hunger strike, and they will go for a hunger strike for an indefinite period till they meet their demands.
1: All right, many thanks for those details. Moving on, Tamil Nadu is witnessing a full-blown political war of words over the Veeramani case. Chief Minister Vijay has questioned M.K. Stalin over the handling of the case, while the DMK chief has hit back, accusing Vijay of using the alleged abuse of minor girls for political gains. With judicial custody extended and bail petitions facing stiff police opposition, the case has triggered a fierce political face-off.
14: A political slugfest has erupted over the explosive Gem Veeramani case in Tamil Nadu. Chief Minister Vijay directly questioned Stalin's silence over the case and demanded to know why action was not taken earlier.
15: Enamo pengal paadhukaappukne poranda maari inda teemukavum inda matram palarum anda athane pengalai seeralichane thooki ulle vechitom. இப்போ அவனை பத்தியும் வாயை திறக்கல, அந்த ஆளை பத்தியும் வாயை திறக்கல. என்னடா இத்தனை வருஷமா மூடி மறைச்சு வச்சிருந்த ஒரு விஷயத்த விஜய் வந்தவனை தோண்டி எடுத்து வெளியே எடுத்து அவனை உள்ள தூக்கி வச்சுட்டான். அந்த அதிர்ச்சியில வாயை திறக்காம இருக்காங்களோ என்னமோ எனக்கு தெரியல. எல்லாம் பச்சை பிள்ளைங்க சார், பச்சை பிள்ளைங்க. அவங்களோட வழிய பத்தி வந்து வெளியில பேச முடியலன்னா
16: நம்ம குழந்தைங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு கடுமையா செயல்பட்டு இருக்காரு. இது திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வெளியே வந்து பதில் சொல்லணும். என்ன அரசியல் அழுத்தம், இல்ல உங்க குடும்ப அழுத்தமா, இதுக்கு பின்னாடி யாரு இருக்கிறா? கிட்ட 70 கோடி ரூபாய் 80 கோடி ரூபாய் பண பரிமாற்றம் பண்ணிருக்கேன், யார் யாருக்கெல்லாம் போயிருக்கு? கண்டிப்பா நம்மளுடைய அண்ணா ஆட்சியில எல்லா உண்மைகளும் வந்து எல்லா தண்டனைகளும் கிடக்கும். அண்ணனுடைய ஒரே குறிக்கோள் பெண்கள் பாதுகாப்பு தான்.
14: But Stalin has hit back, accusing Chief Minister Vijay of turning the abuse of minor girls into a political slugfest. And as the war of words escalates, legally the battle is tightening. Gem Granite's owner Veeramani and co-accused Shanti and Mahindra Simman remain behind bars as their judicial custody has been extended until October 9. The Chennai POXO Special Court has received a police counter-affidavit strongly opposing bail for the two accused, Shanti and Simman. Investigators allege that Shanti received over 24 lakh rupees from Veeramani specifically to destroy crucial evidence. Police warn forensic examination of electronic devices are pending and unestablished victim identities mean releasing the accused would directly imperil witnesses and sabotage justice. Meanwhile, BJP is demanding a CBI probe into the alleged sex scandal, while TVK's ally CPIM has accused Vijay government of falsely taking credit for the case.
17: இப்போதும் இந்த விஷயம் வெளி வந்திருப்பது என்பது போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி பத்மா சண்முக சுந்தரம் அவர்களுடைய உத்தரவின் காரணமாகத்தான் இப்போதாவது இந்த பிரச்சனை என்பது வெளி உலகத்துக்கு வந்து இப்போது இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.
14: With the investigation still underway, the case has become a major political flashpoint in Tamil Nadu. Bureau Report, India Today.
1: Breaking news coming in. Guwahati University student found dead at a homestay where VHP has alleged love jihad over the student's death. VHP has called Nimisha's death a jihadi attack. VHP has demanded all accomplices be exposed. VHP has alleged a larger conspiracy behind her death of the 22-year-old. VHP has put out a tweet to this effect that reads, and I quote, "Jihadis have taken the life of yet another young woman in a homestay in the Azara area of Guwahati, Assam. 22-year-old Guwahati University student Nimisha Thakuria was brutally murdered by the jihadi Asif Ali. Although the Assam police has arrested the jihadi, it is essential to expose the larger conspiracy linked to the incident and unmask the killers and all their accomplices. In the country, Hindu youths, both young men and women, are being continuously targeted, trapped and killed by love jihadis one after the other. It is now time to put a complete stop to all of this," being addressed to Hemanta Biswa Sarma. That's the allegation that has been made by the VHP, as the police is still looking into every detail. 22-year-old Nimisha, who has committed suicide, is what her boyfriend had stated. Who, remember, is also now being investigated. He is being questioned by the cops. And the VHP is alleging an angle of love jihad. VHP has said that the man Nimisha was dating, remember, he is also being questioned by the cops. And they have said that he is the man responsible, as they're calling it a jihadi attack. There you see accused Asif Ali, who is also under the scanner of the cops. And Asif Ali has claimed that Nimisha actually committed suicide. Where her friends rushed to, where she was found, they took her to the hospital, but unfortunately she was declared brought dead. And well, India has delivered a sharp diplomatic snub to Pakistan at the UNGA after Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif raised Kashmir and the Indus Waters Treaty. New Delhi exercised its right of reply, calling Pakistan a puppet regime of the army and warning that cross-border terrorism will have consequences. Take a look at this news report.
18: A year ago, Pakistan faced external aggression from India under a false pretext.
14: Terror state Pakistan once again stands exposed on a global platform.
18: Not.
14: After Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif tried to justify Operation Sindoor as Pakistan victory, India showed Pakistan the mirror and reminded it of the consequences of backing cross-border terrorism.
18: Authority at my command. Therefore, any attempt to stop.
14: During Shehbaz Sharif's remarks at the UNGA, Indian diplomat R. Srinivas laughed at Pakistan Prime Minister's reference.
18: And of course, thanks to a year ago, Pakistan faced external aggression from India under a false pretext. Under the courageous leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, responded with precision and professionalism. They silenced the enemy, repulsed its attack, and taught it a lesson it shall never ever forget.
19: After New York City and the world,
14: India, while exercising its right of reply, snubbed Shehbaz and reminded that global terrorist and Al-Qaeda founder Osama bin Laden was gunned down on their soil.
19: Osama bin Laden was living right on the doorstep.
14: India reiterated that any act of terrorism against India will have consequences.
19: We demonstrated last year that terrorists will have nowhere to run and nowhere to hide. Our right to defend ourselves against terrorism will be exercised, and continued terrorism by Pakistan will have consequences.
14: In a separate instance, after a session on seafarers' safety on the sidelines of the United Nations General Assembly, a Pakistani journalist tried to heckle Jaishankar, but the move backfired. Jaishankar was quick to put the journalist back in his place.
20: When your government will stop sponsoring terrorism in Pakistan, and why your government is trying to kill Sikh leader Gurbachan Singh Pannu here in New York? Can you just tell us when your government will stop sponsoring terrorism in Pakistan?
21: A terrorist country is asking me that question.
20: They are proof.
18: External aggression from India.
14: Year after year, Pakistan brings the same charge sheet to New York and use the UNGA to peddle lies. But this time, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif was left red-faced. Bureau Report, India Today.
1: And well, in a proud moment for India, the women's Kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajta had shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
22: That deliver gold once again at the India Women's.
23: तो देखिए जी, जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है. जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजिशन पर. इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है. पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं. पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगजाओ में किया, वही हमें जापान में भी करना है. यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए.
24: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी. हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है. और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें.
23: बिल्कुल बिल्कुल. और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है. क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
24: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी है और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस कैसा भाई, अपोजिट वाली टीम को, टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है। उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहां वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है।
23: अच्छा, क्या हुआ ना, जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टैली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा। ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से, और आज दोबारा जो है हमें, जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें चाहता है हमसे एक्चुअली।
24: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं, लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
23: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं।
24: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे, और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
23: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेन्स टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है, तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे।
24: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है।
23: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज टाइपी को भी
24: लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए।
23: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए।
24: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी, प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी, और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है।
0: Are watching India Today.

ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।

0: देश भर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमारे ज्ञानेश गुप्ता, अब वो गुप्ता जी का एक गुप्त मिशन चल रहा है। वो गुप्त मिशन अब गुप्त नहीं रहा, अब वो गुप्त मिशन सार्वजनिक हो गया, सबके सामने आ गया। उन्होंने, उनको लगा कि वो गुप्त मिशन लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो मोदी जी पूछते ना एक्स्ट्रा 2AB, चुनाव आयोग में एक्स्ट्रा 2AB, संधु जी और जोशी जी आ गए। अब वो एक्स्ट्रा 2AB ने गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ सामने आ गया कि कैसे लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है।
1: You are watching India Today.

0: film takes shape, the focus remains on season 4, whose basic storyboard is ready. If all goes well, shooting is expected to begin in early 2027.
1: I'm the one that runs the circus. I'm looking for someone to Northeast India ko bahut acche se jaante hain.
2: Northeast ka bahut bada drug smuggler.
3: औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए.
0: Created by Raj and DK, The Family Man follows Shrikant Tiwari, a middle-class husband and father who secretly works for an intelligence unit handling national security threats.
4: तो अभी कौन सा सेंचुरी मार रहा है तू?
5: कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर, कभी कटे ना, अभी मचेगा.
0: Across three seasons, the series has built a world of espionage, family dynamics, and evolving national security threats.
6: गलत फंस गया यार. साला अभी जाके मेरी डेटिंग का सीन फल फूलने लगा था, सब खत्म. थोड़ी देख ले.
0: With Manoj Vajpayee's Shrikant and Shahrukh Hashmi's J.K. Talpade becoming fan favorites, if the film takes shape, the Manoj Vajpayee starrer could become the latest Indian streaming franchise to make the leap to cinema.
6: एक बार यहाँ से निकल गया ना J.K., मैं तेरा स्वयंवर रचाऊंगा.
7: मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली.
8: खतरा चाहे जितना भी छोटा हो, उसे जीवित नहीं छोड़ सकते. यही गद्दी का नियम है.
0: Following the recent example of Mirzapur, which expanded its universe with Mirzapur the movie.
9: अरे क्या तेरा हीमोग्लोबिन कम है कारे? देख देख, कम खून निकल रहा है.

0: इसलिए कर रहे हैं, उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में होड़जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: जमुई, समस्तीपुर, बांका, दिल्ली. डिफरेंट क्राइम्स, वन कॉमन फियर, वुमेन नॉट बीइंग सेफ इन पब्लिक स्पेसेस. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है. उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं.
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था. कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था.
3: ऑल ऑफ दिस इज a lot normalized and it's not normal. Like for any girl that we are walking, a man is staring, that is a crime. Eve teasing, stalking, even the kind of cyber crimes that are happening all over the university. And men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's, indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
0: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the Dusu election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दी उन्होंने. और मुझे, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, तो मुझे बोल रहे चुप रहे, ज्यादा मत बोल, मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए. और वहां जाके गंदे गंदे इशारे,
5: वो इशारे आपकी तरफ,
4: हमारी तरफ, मेरी तरफ ही इशारे किए थे. हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए. फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है. मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए, सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों ने.
0: फॉर दीज स्टूडेंट्स the problem is not just the crime but what follows: jokes, excuses, victim blaming and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic: better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP. एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए, लाइक कुछ भी, मतलब कि पुलिस वगैरह को ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए गर्ल्स की सेफ्टी के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
6: हम लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए. तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है.
8: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाएं,
9: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आती है. उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गांव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया.
0: फ्रॉम जमुई टू दिल्ली, द जियोग्राफी चेंजेस बट द फियर रिमेन्स. वुमेन शुडंट हैव टू कैलकुलेट रिस्क जस्ट टू मूव through public spaces.
10: Years and after years, nothing really has changed on the ground, and the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
11: From India's Kabaddi team, serving a reminder that they are the best in the business, to the women shooters hitting the bullseye yet again, the Indian athletes have had a fruitful day at the ongoing Asian Games in Japan. Let's take a closer look at some of the glorious moments from today's action. India's Kabaddi men continue their dominance in Asian Games. The defending champions held off a spirited Iran side, winning the final 40-34. It was a close contest midway through the summit clash before India turned on the power in the closing stretch to seal the win. It's a 9th Asian Game gold for India in the sport, a streak that remains unmatched. Prior to the men's team gold, it was the women's team that got their hands on the gold medal. They beat Iran 37-34 in a hard-fought final to retain their Asian Games crown. India raced to a 22-16 lead at the break, but Iran hit back hard in the second half, edging 18-15. It wasn't enough to close the gap, though, as India held on for the gold. Meanwhile, Sawan Barwal delivered a stunner on the marathon course. The army man from Himachal Pradesh ran the race of his life to claim silver at the Asian Games, smashing his own national record in the process. Barwal clocked 2 hours, 11 minutes and 37 seconds to seal a stunning silver. It's a historic moment for Indian athletics, the country's first Asian Games marathon medal 1982. The trio of the Lothama Sen, Vidarsa Vinod and Ashi Choksi claimed silver in the women's 15-meter rifle three-position event. India aggregated 17.63 to finish second on the podium, with China taking gold. Kazakhstan rounded off the podium with bronze, scoring 17.54. Jashna Chinnappa and Velavan Senthil Kumar settled for bronze, going down to Hong Kong's Tang Ming Hong and Lee Kai in a tense semi-final. The Indian duo lost the nerve-wracking match 11-10 to 11-11-10, falling agonizingly short of a place in the final. In a proud moment for India, the women's Kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
5: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है. जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर. इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है. पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं. पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगजाओ में किया, वही हमें जापान में भी करना है, यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए.
12: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी. हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें.
5: बिल्कुल बिल्कुल. और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है. क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
13: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी है और रेडिंग जरूरी है. पर डिफेंस कैसा भाई, अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है. उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है.
5: अच्छा, क्या हुआ ना, जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा. ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें, जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है. शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कंट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें यू नो चाहता है हमसे एक्चुअली.
12: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं. लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर करके कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी.
5: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या यू नो भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं.
12: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे. और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था. ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है.
5: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हराकर गोल्ड मेडल जीता है. तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे.
12: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है.
5: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज टाइपे को
12: क्योंकि
5: भी आपने
12: लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में. तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए.
5: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये यू नो देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है. तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी. तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए.
12: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए. क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी. प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी. और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है.
14: Are watching India Today.

0: India alliance is very clear. Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal. It is anti-constitutional. I strongly believe that the legal safeguards provided to the election commissioner, which were instituted by this government, by the BJP government, to protect him no matter what he does, those safeguards need to be removed. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason, and he needs to be tried for treason.
1: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जमुई, समस्तीपुर, बांका, दिल्ली. डिफरेंट क्राइम्स, वन कॉमन फियर, वुमेन नॉट बीइंग सेफ इन पब्लिक स्पेसेस. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है. उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं.
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था. कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था.
3: ऑल ऑफ दिस इज अ लॉट नॉर्मलाइज्ड एंड इट्स नॉट नॉर्मल लाइक फॉर एनी गर्ल.

0: that we are walking, a man is staring, that is a crime. Eve teasing, stalking, even the kind of cyber crimes that are happening all over the university. And men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's, indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
1: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the DUSU election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop. For these students, the blaming and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic: better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
2: I'm from UP. एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए लाइक कुछ भी मतलब कि पुलिस वगैरह को ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए गर्ल्स की सेफ्टी के लिए
3: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है
2: लोग ना बवाना से हैं तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका बहुत आउटर एरिया है मतलब बहुत ही गांव का एरिया है
4: फैसिलिटी होनी चाहिए कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं
2: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आते हैं उसमें भी बस आए हैं आदिति महाविद्यालय से आए हैं वो गाँव का एरिया है पूरा मतलब आउटर एरिया
1: From Jamui to Delhi. The geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
3: Years and after years, nothing really has changed on the ground. And the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
5: In a proud moment for India, the women's kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
6: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है यानी कि नंबर वन पोजीशन पर इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है पुष्पा टीम की कप्तान है तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं पुष्पा जी इस बार जापान में ये जो टीम है आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया वही हमें जापान में भी करना है यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए
7: हाँ जी जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें
6: बिल्कुल बिल्कुल और पूजा क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि

0: नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए।
1: सर टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस का ऐसा भाई अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है। उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है।
0: अच्छा क्या हुआ ना, जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा। ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से, और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी नो विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कंट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें चाहता है हमसे एक्चुअली।
1: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
0: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या आप भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं।
1: सर अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया
0: बिल्कुल।
1: था, फाइनल में वो आए थे। और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
0: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे।
1: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है,
0: अच्छा कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज ताइपे को भी
1: क्योंकि
0: आपने पिछली
1: लास्ट
0: बार
1: टाइम
0: हराया।
1: जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए। हाँ
0: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी, और
1: जी
0: अब जो है ये देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए।
1: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी। प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी, और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है।
2: That's all that we could pack for you in this edition. Thank you so much for watching.
3: You are watching India Today.

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में फोर्जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: Jamui, Samastipur, Banka, Delhi. Different crimes, one common fear. Women not being safe in public spaces. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions, they say, have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही मतलब बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था कुछ भी मतलब

0: अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था.
1: ऑल ऑफ दिस इज अ लॉट नॉर्मलाइज एंड इट्स नॉट नॉर्मल लाइक फॉर एनी गर्ल दैट वी आर वॉकिंग अ मैन इज स्टेयरिंग दैट इज अ क्राइम. You know, eve-teasing, stalking, even the kind of cyber crimes that are happening all over the university. And men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's, indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
2: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the Dusu election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
3: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दिए उन्होंने और मुझे, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, तो मुझे बोल रहे चुप रहे ज्यादा मत बोल, मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए और वहां जाके गंदे गंदे इशारे
4: वो के, इशारे आपकी तरफ
3: के हमारी तरफ, मेरी तरफ इशारे किए थे, हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए, फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है. मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए, सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों ने.
2: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These include 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic. Better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
5: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी, मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
6: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
5: लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है.
7: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाए,
8: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आते हैं. उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गाँव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया.
2: From Jamui to Delhi, the geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
6: Years and after years, nothing really has changed on the ground. And the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
9: From India's Kabaddi team, serving a reminder that they are the best in the business, to the women shooters hitting the bullseye yet again, the Indian athletes have had a fruitful day at the ongoing Asian Games in Japan. Let's take a closer look at some of the glorious moments from today's action. India's Kabaddi men continue their dominance in Asian Games. The defending champions held off a spirited Iran side, winning the final 40-34. It was a close contest midway through the summit clash before India turned on the power in the closing stretch to seal the win. It's a 9th Asian Games gold for India in the sport, a streak that remains unmatched. Prior to the men's team gold, it was the women's team that got their hands on the gold medal. They beat Iran 37-34 in a hard-fought final to retain their Asian Games crown. India raced to a 22-16 lead at the break, but Iran hit back hard in the second half, edging 18-15. It wasn't enough to close the gap, though, as India held on for the gold. Meanwhile, Savan Barwal delivered a stunner on the marathon course. The army man from Himachal Pradesh ran the race of his life to claim silver at the Asian Games, smashing his own national record in the process. Barwal clocked 2 hours 11 minutes and 37 seconds to seal a stunning silver. It's a historic moment for Indian athletics, the country's first Asian Games marathon medal 1982. The try of the Lothama Sen, Didarsa Vinod and Ashi Choksi claimed silver in the women's 15-meter rifle three-position event. India aggregated 17.63 to finish second on the podium, with China taking gold. Kazakhstan rounded off the podium with bronze, scoring 17.54. Dashna Chinnappa and Velavan Senthil Kumar settled for bronze, going down to Hong Kong's Tang Ming Hong and Lee Kai in a tense semi-final. The Indian duo lost the nerve-wracking match 11-10 to 11-11-10, falling agonizingly short of a place in the final. In a proud moment for India, the women's kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
4: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है। जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर। इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है। पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं। पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है, यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
10: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी। हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है। क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
11: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस का ऐसा भाई अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है। उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है।
4: अच्छा, क्या हुआ ना जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा। ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें चाहता है हमसे एक्चुअली।
11: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
4: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं?
10: सर अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया
4: बिल्कुल
10: था, फाइनल में वो आए थे। और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
4: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे।
10: वैसे सच बताया बताया है तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है,
4: अच्छा कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज ताइपे को भी
10: क्योंकि
4: आपने पिछली
10: लास्ट
4: बार हराया
10: टाइम
4: था।
10: जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में। तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए।
4: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और
10: जी
4: अब जो है ये देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है। तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी। तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए।
10: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी। प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी, और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है।
9: And that's all that we could pack for you in this edition. Thank you so much for watching.
12: You are watching India Today.

0: Jamui, Samastipur, Banka, Delhi. Different crimes, one common fear. Women not being safe in public spaces. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही

0: मतलब बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था, कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था।
1: ऑल ऑफ दिस इज अ लॉट नॉर्मलाइज्ड एंड इट्स नॉट नॉर्मल लाइक फॉर एनी गर्ल दैट वी आर वॉकिंग अ मैन इज स्टेयरिंग दैट इज अ क्राइम यू नो ईव टीजिंग स्टॉकिंग इवन द काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स दैट आर हैपनिंग ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी एंड मेन जस्ट डोंट नो दैट इट इज क्रिमिनल इन नेचर लेट अलोन इट्स यू नो इनडिसेंट And our university, all the authorities have been complicit in that.
2: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the Dusu election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
3: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दी उन्होंने और मुझे मैंने बोला ये क्या कर रहे हो पर्चा क्यों फाड़ रहे हो हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो तो मुझे बोल रहे चुप रहे ज्यादा मत बोल मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए और वहां जाके गंदे गंदे इशारे
4: वो इशारे आपकी तरफ
3: के हमारी तरफ मेरी तरफ ही इशारे किए थे हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए फिर पुलिस वालों से हेलो किया है पुलिस वाले भी इनके साथ है मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों
2: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These include 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic. Better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
5: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
6: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है
5: लोग ना बवाना से हैं तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका बहुत आउटर एरिया है मतलब बहुत ही गांव का एरिया है
7: फैसिलिटी होनी चाहिए कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाएं
8: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आती है उसमें भी बस आए हैं आदिति महाविद्यालय से आए हैं वो गाँव का एरिया है पूरा मतलब आउटर एरिया
2: From Jammu to Delhi. The geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
9: Years and after years, nothing really has changed on the ground. And the Kalkaji incident and the Jammu and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
10: In a proud moment for India, the women's kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
11: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है यानी कि नंबर वन पोजीशन पर इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है पुष्पा टीम की कप्तान है तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं पुष्पा जी इस बार जापान में यू नो ये जो टीम है आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया वही हमें जापान में भी करना है यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
4: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी। हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें।
11: बिल्कुल बिल्कुल। और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है। क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
4: सर टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस कैसा भाई, अपोजिट वाली टीम को, टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है। उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है।
11: अच्छा, क्या हुआ ना जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा। ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें चाहता है हमसे एक्चुअली।
4: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं, लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
11: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं?
4: सर अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
11: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है, तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे?
4: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है।
11: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज टाइपिंग को भी आपने
4: लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए।
11: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए?
4: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी, प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है।
12: Watching India Today.

0: जमुई, समस्तीपुर, बांका, दिल्ली. डिफरेंट क्राइम्स, वन कॉमन फियर, विमेन नॉट बीइंग सेफ इन पब्लिक स्पेसेस. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है. उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं.
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था. कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था.
3: ऑल ऑफ दिस इज़ a lot normalized, and it's not normal. Like for any girl that we are walking, a man is staring, that is a crime. Eve-teasing, stalking, even the kind of cyber crimes that are happening all over the university, and men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
0: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the Dusu election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दिए उन्होंने. और मुझे, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, तो मुझे बोल रहे हैं चुप रह, ज्यादा मत बोल. मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए, और वहां जाके गंदे गंदे इशारे
5: वो इशारे आपकी तरफ किए,
4: हमारी तरफ, मेरी तरफ ही इशारे किए थे. हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए. फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है. मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए, सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों.
0: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic: better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी, मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
6: लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए. तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है, और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है.
8: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाए,
9: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है, तब जाके बस आते हैं. उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गाँव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया.
0: From Jamui to Delhi, the geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
10: Years and after years, nothing really has changed on the ground, and the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
11: From India's Kabaddi team, serving a reminder that they are the best in the business, to the women shooters hitting the bullseye yet again, the Indian athletes have had a fruitful day at the ongoing Asian Games in Japan. Let's take a closer look at some of the glorious moments from today's action. India's Kabaddi men continue their dominance in Asian Games. The defending champions held off a spirited Iran side, winning the final 40-34. It was a close contest midway through the summit clash before India turned on the power in the closing stretch to seal the win. It's a 9th Asian Games gold for India in the sport, a streak that remains unmatched. Prior to the men's team gold, it was the women's team that got their hands on the gold medal. They beat Iran 37-34 in a hard-fought final to retain their Asian Games crown. India raced to a 22-16 lead at the break, but Iran hit back hard in the second half, edging 18-15. It wasn't enough to close the gap, though, as India held on for the gold. Meanwhile, Savan Barwal delivered a stunner on the marathon course. The army man from Himachal Pradesh ran the race off his life to claim silver at the Asian Games, smashing his own national record in the process. Barwal clocked 2 hours 11 minutes and 37 seconds to seal a stunning silver. It's a historic moment for Indian athletics, the country's first Asian Games marathon medal 1982. The try of the Lothama Sen, Vidarsa Vinod and Ashi Choksi claimed silver in the women's 15-meter rifle three-position event. India aggregated 17.63 to finish second on the podium, with China taking gold. Kazakhstan rounded off the podium with bronze, scoring 17.54. Joshna Chinnappa and Belavan Senthil Kumar settled for bronze, going down to Hong Kong's Tang Ming Hong and Lee Kai in a tense semi-final. The Indian duo lost the nerve-wracking match 11-10 to 11-11-10, falling agonizingly short of a place in the final. In a proud moment for India, the women's Kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
5: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है. जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर. इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है. पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं. पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है, यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए.
12: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी. हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें.
5: बिल्कुल बिल्कुल. और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है. क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
13: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस कैसा भाई, अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है. उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहां वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है.
5: अच्छा, क्या हुआ ना जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा. ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है. शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें यू नो चाहता है हमसे एक्चुअली.
12: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं. लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी.
5: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या आप यू नो भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं.
12: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे. और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आ रहा था. ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है.
5: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है. तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे.
12: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है.
5: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज टाइपे को भी आपने
12: लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में. तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए.
5: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये यू नो देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है. तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी. तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए.
12: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी. प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी. और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है.
14: Are watching India Today.

0: India alliance is very clear. Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal. It is anti-constitutional. I strongly believe that the legal safeguards provided to the election commissioner, which were instituted by this government, by the BJP government, to protect him no matter what he does, those safeguards need to be removed. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason, and he needs to be tried for treason.
1: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।

0: आती है, उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है। उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं।
1: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था। कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था।
2: ऑल ऑफ दिस इज अ लॉट नॉर्मलाइज्ड एंड इट्स नॉट नॉर्मल लाइक फॉर एनी गर्ल दैट वी आर वॉकिंग अ मैन इज स्टेयरिंग दैट इज अ क्राइम, यू नो, ईव टीजिंग, स्टॉकिंग, इवन the kind of cyber crimes that are happening all over the university. And men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's, indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
3: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the DUSU election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दिए उन्होंने, और मुझे, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, तो मुझे बोल रहे हैं चुप रह, ज्यादा मत बोल, मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए, और वहां जाके गंदे गंदे इशारे,
5: वो इशारे आपकी तरफ
4: के, हमारी तरफ, मेरी तरफ ही इशारे किए थे, हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए, फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है। मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए, सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों ने।
3: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic: better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी, मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
6: लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है, और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है।
8: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाएं,
9: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आते हैं। उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गाँव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया।
3: From Jammui to Delhi, the geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
7: Years and after years, nothing really has changed on the ground, and the Kalkaji incident and the Jammui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
10: In a proud moment for India, the women's kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
11: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं, और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है। जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर। इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है। पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं। पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है, यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
5: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी। हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें।
11: बिल्कुल बिल्कुल। और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है, क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
12: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी है और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस कैसा भाई, अपोजिट वाली टीम को, टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है। उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है।
11: अच्छा, क्या हुआ ना, जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा। ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी नो विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें चाहता है हमसे एक्चुअली।
5: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं, लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
11: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं?
5: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
11: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है, तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे?
5: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है।
11: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज टाइपे को
5: भी लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए।
11: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए?
5: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी, प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी, और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है।
13: Are watching India Today.

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माता जी का, जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में
1: जी
0: होड़जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: हम लोग सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज्य बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: जमुई, समस्तीपुर, बांका, दिल्ली. डिफरेंट क्राइम्स, वन कॉमन फियर, वुमेन नॉट बीइंग सेफ इन पब्लिक स्पेसेस. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है. उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं.
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था. कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था.
3: ऑल ऑफ दिस इज a lot normalized and it's not normal. Like for any girl that we are walking, a man is staring, that is a crime. Eve teasing, stalking, even the kind of cyber crimes that are happening all over the university. And men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's, indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
0: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the Dusu election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दी उन्होंने. और मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो. तो मुझे बोल रहे चुप रहे, ज्यादा मत बोल, मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए. और वहां जाके गंदे गंदे इशारे
5: वो इशारे आपकी तरफ
4: किए, हमारी तरफ, मेरी तरफ भी इशारे किए थे. हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए. फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है. मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए. सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों ने.
0: फॉर दीज स्टूडेंट्स The problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic: better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP. एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए, लाइक कुछ भी, मतलब कि पुलिस वगैरह को ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए गर्ल्स की सेफ्टी के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
6: हम लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए. तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है.
8: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाएं,
9: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आती है. उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गांव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया.
0: फ्रॉम जमुई टू दिल्ली, द जियोग्राफी चेंजेस बट द फियर रिमेन्स. वुमेन शुडंट हैव टू कैलकुलेट रिस्क जस्ट टू मूव through public spaces.
10: Years and after years, nothing really has changed on the ground, and the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
11: From India's Kabaddi team, serving a reminder that they are the best in the business, to the women shooters hitting the bullseye yet again, the Indian athletes have had a fruitful day at the ongoing Asian Games in Japan. Let's take a closer look at some of the glorious moments from today's action. India's Kabaddi men continue their dominance in Asian Games. The defending champions held off a spirited Iran side, winning the final 40-34. It was a close contest midway through the summit clash before India turned on the power in the closing stretch to seal the win. It's a 9th Asian Game gold for India in the sport, a streak that remains unmatched. Prior to the men's team gold, it was the women's team that got their hands on the gold medal. They beat Iran 37-34 in a hard-fought final to retain their Asian Games crown. India raced to a 22-16 lead at the break, but Iran hit back hard in the second half, edging 18-15. It wasn't enough to close the gap, though, as India held on for the gold. Meanwhile, Savan Barwal delivered a stunner on the marathon course. The army man from Himachal Pradesh ran the race of his life to claim silver at the Asian Games, smashing his own national record in the process. Barwal clocked 2 hours, 11 minutes and 37 seconds to seal a stunning silver. It's a historic moment for Indian athletics, the country's first Asian Games marathon medal 1982. The try of the Lothama Sen, Vidarsa Vinod and Ashi Choksi claimed silver in the women's 15-meter rifle three-position event. India aggregated 17.63 to finish second on the podium, with China taking gold. Kazakhstan rounded off the podium with bronze, scoring 17.54. Dashna Chinnappa and Velavan Senthil Kumar settled for bronze, going down to Hong Kong's Tang Ming Hong and Lee Kai in a 10 semi-final. The Indian duo lost the nerve-wracking match 11-10 to 11-11-10, falling agonizingly short of a place in the final. In a proud moment for India, the women's Kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
5: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है. जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर. इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है. पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं. पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है. यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए.
12: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी. हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है. और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें.
5: बिल्कुल बिल्कुल. और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है. क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
13: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी है और रेडिंग जरूरी है. पर डिफेंस का ऐसा भाई, अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है. उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है.
5: अच्छा, क्या हुआ ना, जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा. ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है. शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कंट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें यू नो चाहता है हमसे एक्चुअली.
12: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं. लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर करके कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी.
5: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या यू नो भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं.
12: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे. और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो ईरान के साथ आया था. ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है.
5: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हराकर गोल्ड मेडल जीता है. तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे.
12: वैसे सच बताया बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है.
5: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज टाइपे को
12: क्योंकि
5: भी आपने
12: लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में. तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में. तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच.
5: आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी. तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए.
12: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए. क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी. प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी. और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है.
14: Are watching India Today.

0: जमुई, समस्तीपुर, बांका, दिल्ली. डिफरेंट क्राइम्स, वन कॉमन फियर, वुमेन नॉट बीइंग सेफ इन पब्लिक स्पेसेस. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है. उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं.
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था. कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था.
3: ऑल ऑफ दिस इज़ अ लॉट नॉर्मलाइज.

0: And it's not normal. Like, for any girl that we are walking, a man is staring, that is a crime. Eve teasing, stalking, even the kind of cyber crimes that are happening all over the university. And men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's, indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
1: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the DUSU election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
2: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दी उन्होंने और मुझे मैंने बोला ये क्या कर रहे हो पर्चा क्यों फाड़ रहे हो हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो तो मुझे बोल रहे हैं चुप रह ज्यादा मत बोल मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए और वहां जाके गंदे गंदे इशारे
3: वो इशारे आपकी तरफ किए
2: हमारी तरफ मेरी तरफ ही इशारे किए थे हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए फिर पुलिस वालों से हेलो किया है पुलिस वाले भी इनके साथ है मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों ने
1: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic. Better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
4: I'm from UP. एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए लाइक कुछ भी मतलब कि पुलिस वगैरह को ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए गर्ल्स की सेफ्टी के लिए
5: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है
4: लोग ना बवाना से हैं तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका बहुत आउटर एरिया है मतलब बहुत ही गांव का एरिया है
6: फैसिलिटी होनी चाहिए कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाएं
7: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आते हैं उसमें भी बस आए हैं आदिति महाविद्यालय से आए हैं वो गांव का एरिया है पूरा मतलब आउटर एरिया
1: फ्रॉम जमुई टू दिल्ली द जियोग्राफी चेंजेस बट द फियर रिमेन्स वुमेन शुडंट हैव टू कैलकुलेट रिस्क जस्ट टू मूव through public spaces.
8: Years and after years, nothing really has changed on the ground. And the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
9: In a proud moment for India, the women's kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
10: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है यानी कि नंबर वन पोजीशन पर इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है पुष्पा टीम की कप्तान है तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं पुष्पा जी इस बार जापान में ये जो टीम है आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया वही हमें जापान में भी करना है यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए
3: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी। हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें।
10: बिल्कुल बिल्कुल। और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी एक ऐसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है। क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
3: सर टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस का ऐसा भाई अपोजिट वाले टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है। उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है।
10: अच्छा, क्या हुआ ना जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा। ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी नो विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें यू नो चाहता है हमसे एक्चुअली।
3: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं, लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
10: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या यू नो भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं?
3: सर अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
10: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है, तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे?
3: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है।
10: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज ताइपे को भी आपने पिछली बार
3: लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए।
10: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये यू नो देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए?
3: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी, प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी, और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है।
11: Watching India Today.

0: the Chief Election Commissioner should resign immediately. There are a number of political parties which have demanded the same thing. It's now clear that the Chief Election Commissioner is acting as though he is the sole election commission. He is speaking for the Election Commission when the record shows that the two fellow election commissioners have disagreed.
1: देखिए राहुल गांधी को हर चीज में आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन से आपत्ति है, ईवीएम से आपत्ति है, वोटर से आपत्ति है, नरेंद्र मोदी जी से आपत्ति है, एसआईआर से आपत्ति है। मुझे बताइए कि साफ स्वच्छ राजनीति जो अब चाहते हो, साफ स्वच्छ प्रजातंत्र चाहते हो, तो इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन अप करने की आवश्यकता है या नहीं? जो बोगस वोटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हैं और वहाँ बैठे हैं वोट कर रहे हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है या नहीं? घुसपैठ है या नहीं? ये सभी सवालों के ऊपर वो आत्मचिंतन करें तो उनको ये सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एसआईआर सिर्फ अपने काम करें।

0: Jamui, Samastipur, Banka, Delhi. Different crimes, one common fear. Women not being safe in public spaces. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions, they say, have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था बट इधर ये दो वो दो मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था
3: ऑल ऑफ दिस इज a lot normalized and it's not normal like for any girl that we are walking a man is staring that is a crime you know eavesdropping stalking even the kind of cyber crimes that are happening all over the university and men just don't know that it is criminal in nature let alone it's indecent and our university all the authorities have been complicit in that
0: for a young woman in Delhi A normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the DUSU election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दी उन्होंने और मुझे मैंने बोला ये क्या कर रहे हो पर्चा क्यों फाड़ रहे हो हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो तो मुझे बोल रहे चुप रह ज्यादा मत बोल मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए और वहां जाके गंदे गंदे इशारे
5: वो इशारे आपकी तरफ किए
4: हमारी तरफ मेरी तरफ ही इशारे किए थे हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए फिर पुलिस वालों से हेलो किया है पुलिस वाले भी इनके साथ है मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों ने
0: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic. Better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है
6: लोग ना बवाना से हैं तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका बहुत आउटर एरिया है मतलब बहुत ही गांव का एरिया है
8: फैसिलिटी होनी चाहिए कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाए
6: जिससे भी हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आते हैं उसमें भी बस आए हैं आदिति महाविद्यालय से आए हैं वो गाँव का एरिया है पूरा मतलब आउटर एरिया
0: From Jamui to Delhi. The geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
9: Years and after years, nothing really has changed on the ground. And the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
10: From India's Kabaddi team serving a reminder that they are the best in the business to the women shooters hitting the bullseye yet again, the Indian athletes have had a fruitful day at the ongoing Asian Games in Japan. Let's take a closer look at some of the glorious moments from today's action. India's Kabaddi men continue their dominance in Asian Games. The defending champions held off a spirited Iran side, winning the final 40-34. It was a close contest midway through the summit clash before India turned on the power in the closing stretch to seal the win. It's a 9th Asian Game gold for India in the sport, a streak that remains unmatched. Prior to the men's team gold, it was the women's team that got their hands on the gold medal. They beat Iran 37-34 in a hard-fought final to retain their Asian Games crown. India raced to a 22-16 lead at the break, but Iran hit back hard in the second half, edging 18-15. It wasn't enough to close the gap, though, as India held on for the gold. Meanwhile, Sawan Barwal delivered a stunner on the marathon course. The army man from Himachal Pradesh ran the race of his life to claim silver at the Asian Games, smashing his own national record in the process. Barwal clocked 2 hours, 11 minutes and 37 seconds to seal a stunning silver. It's a historic moment for Indian athletics, the country's first Asian Games marathon medal 1982. The trio of the Lothama Sen, Vidarsa Vinod and Ashi Choksi claimed silver in the women's 15-meter rifle three-position event. India aggregated 17.63 to finish second on the podium, with China taking gold. Kazakhstan rounded off the podium with bronze, scoring 17.54. Jashna Chinnappa and Velavan Senthil Kumar settled for bronze, going down to Hong Kong's Tang Ming Hong and Lee Kai in a tense semi-final. The Indian duo lost the nerve-wracking match 11-10 to 11-11-10, falling agonizingly short of a place in the final. In a proud moment for India, the women's Kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
5: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है. जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर. इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है. पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं. पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है, यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए.
11: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी. हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें.
5: बिल्कुल बिल्कुल. और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है. क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
12: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी है और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस का ऐसा भाई अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है. उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है.
5: अच्छा, क्या हुआ ना जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा. ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है। शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें यू नो चाहता है हमसे एक्चुअली।
11: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी।
5: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या आप यू नो भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं।
11: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे। और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था। ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है।
5: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेंस टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे।
11: वैसे सच बताया बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है,
5: अच्छा कैसे क्यों ऐसा, चाइनीज टाइपिंग को भी
11: क्योंकि
5: आपने पिछली
11: लास्ट
5: बार
11: टाइम
5: हराया।
11: जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए।
5: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये यू नो देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए।
11: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी, प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी। और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है।
10: That's all that we could pack for you in this edition. Thank you so much for watching.
13: Are watching India Today.

0: India alliance is very clear. Every single leader of the alliance, every single party is in full agreement that what is going on is absolutely illegal. It is anti-constitutional. I strongly believe that the legal safeguards provided to the election commissioner, which were instituted by this government, by the BJP government, to protect him no matter what he does, those safeguards need to be removed. If anybody is committing illegal acts against this nation, against our constitution, against India, they need to be tried for the criminal actions that they are involved in. This is treason, and he needs to be tried for treason.
1: ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, खासतौर पे सीईसी की है कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से रखें। देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता है मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष का काम है राजनीति करना। आप अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी राजनीति को साधेंगे कैसे? पर ऐसे में विपक्ष को संतुष्ट कराने के लिए सीईसी को नहीं बल्कि जनता को विश्वास में लेने के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। ऐसे में अगर चुनावी प्रक्रिया के ऊपर ही लोगों का विश्वास या संदेह खड़ा हो जाएगा तो ये गलत है।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जमुई, समस्तीपुर, बांका, दिल्ली. डिफरेंट क्राइम्स, वन कॉमन फियर, विमेन नॉट बीइंग सेफ इन पब्लिक स्पेसेस. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है. उस डर के साथ हम बस में सफर करते हैं.

0: और मेट्रो में सफर करते हैं?
1: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था। कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था।
2: ऑल ऑफ दिस इज अ लॉट नॉर्मलाइज एंड इट्स नॉट नॉर्मल लाइक फॉर एनी गर्ल दैट वी आर वॉकिंग अ मैन इज स्टेयरिंग दैट इज अ क्राइम यू नो ईव टीजिंग स्टॉकिंग इवन the kind of cyber crimes that are happening all over the university and men just don't know that it is criminal in nature let alone it's indecent and our university all the authorities have been complicit in that.
3: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the Dusu election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दी उन्होंने और मुझे, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, तो मुझे बोल रहे चुप रहे ज्यादा मत बोल, मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए और वहां जाके गंदे गंदे इशारे
5: वो इशारे आपकी तरफ किए
4: हमारी तरफ मेरी तरफ ही इशारे किए थे, हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए, फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है। मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए, सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों?
3: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic. Better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी, मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
6: लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है।
8: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगवाए
9: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है तब जाके बस आती है। उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गाँव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया।
3: From Jammui to Delhi, the geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
7: Years and after years, nothing really has changed on the ground, and the Kalkaji incident and the Jammui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
10: In a proud moment for India, the women's kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
11: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है। जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर। इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है। पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं। पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है. यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए.
5: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी. हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है. और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें.
11: बिल्कुल बिल्कुल. और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है, और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है. क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
12: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है. पर डिफेंस का ऐसा भाई, अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है. उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहाँ वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है.
11: अच्छा, क्या हुआ ना जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा. ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें, जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी नो विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है. शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें यू नो चाहता है हमसे एक्चुअली.
5: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं. लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी.
11: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या आप यू नो भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं?
5: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे. और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था. ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है.
11: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेन्स टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है. तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे?
5: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है.
11: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज टाइपिंग को भी
5: आपने लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में, तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए.
11: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये यू नो देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है, तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी. तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए?
5: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी. प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी, और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है.
13: Watching India Today.

0: ये इसलिए कर रहे हैं उनके माताजी का, जो वो 83 में भारत की नागरिकता ली और 80 में
1: जी
0: होड़जरी करके वोट दिया और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया उनके पिटीशन को, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।
1: सब लोग चाहते इस्तीफा होनी चाहिए उनकी और गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो हमने इस पहले भी इस बात को जो है कहा था, राज्य बिहार भर के हर जिलों में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो लंबी लड़ाई होगी, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे।

0: जमुई, समस्तीपुर, बांका, दिल्ली. डिफरेंट क्राइम्स, वन कॉमन फियर, विमेन नॉट बीइंग सेफ इन पब्लिक स्पेसेस. The geography changes, the fear does not. Beyond the headlines and the protests is another story. Women who have learned to treat fear as a part of their daily routine. India Today spoke to women navigating buses, campuses and city streets. And the precautions they say have become routine.
1: सुबह की जो बस आती है उसमें इतनी भीड़ होती है, कब कौन कहाँ छू देगा किसी को नहीं पता है. उस डर के साथ हम बस में सफ़र करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं.
2: मतलब मैं हिमाचल से हूँ, मतलब जो कंडक्टर है वो बहुत ही गंदे तरीके से सबसे बात कर रहा था. कुछ भी मतलब अच्छे से बात कर सकता था, बट इधर ये दो वो दो, मतलब कुछ भी अजीब वो गरीब बातें कर रहा था.
3: ऑल ऑफ दिस इज़ a lot normalized, and it's not normal. Like for any girl that we are walking, a man is staring, that is a crime. Eve teasing, stalking, even the kind of cyber crimes that are happening all over the university, and men just don't know that it is criminal in nature, let alone it's indecent. And our university, all the authorities have been complicit in that.
0: For a young woman in Delhi, a normal journey can come with an extra checklist. Be alert, watch your surroundings, tell someone where you are. And then there is the question of institutional response. These visuals recorded during the Dusu election period show a woman alleging that obscene remarks were directed at protesting students. And then the perpetrator was hugged by a cop.
4: गंदे गंदे इशारे करके महिला विरोधी गालियां भी दिए उन्होंने. और मुझे, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, हमारा पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो, तो मुझे बोल रहे हैं चुप रह, ज्यादा मत बोल. मतलब गाली भी दिया उन्होंने बदतमीजी करते हुए. और वहां जाके गंदे गंदे इशारे,
5: वो इशारे आपकी तरफ किए,
4: हमारी तरफ, मेरी तरफ ही इशारे किए थे. हम चार पांच लड़के एक साथ ही खड़े थे, पर्चा फाड़ के वहां जाके इशारे हमारे तरफ किए. फिर पुलिस वालों से हेलो किया है, पुलिस वाले भी इनके साथ है. मेरा ये सवाल है कि कानून किसके लिए. सामने पुलिस वालों ने देखा उसको इशारे करते हुए, क्यों नहीं उसी टाइम पकड़ा पुलिस वालों.
0: For these students, the problem is not just the crime, but what follows. Jokes, excuses, victim blaming, and questions. And the scale of the problem goes far beyond these incidents. According to NCRB's 2024 data, 4.41 lakh crimes against women were registered across India. These includes 29,536 registered rape cases. Delhi alone recorded 13,396 crimes against women, including 1,058 rape cases. Crime figures capture only what gets reported, not the woman who changes her route or calls home while walking. Students say the fix is basic: better lighting, more patrolling, working CCTV, and safer routes.
6: I'm from UP, and मैं ये कहना चाहती हूँ कि girls की safety के लिए कुछ करना चाहिए. Like कुछ भी, मतलब कि police वगैरह को ज़्यादा secure रहना चाहिए girls की safety के लिए.
7: आप लोग जब रात में कैंपस से जाते हो, ये यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग होती है?
6: लोग ना बवाना से हैं, तो वहाँ पे ना रात में रिठाला के बाद बस करनी पड़ती है हमें वहाँ पहुँचने के लिए. तो वहाँ पे बसेस बहुत कम मिलती है, और वहाँ पे बहुत ही इलाका, बहुत आउटर एरिया है, मतलब बहुत ही गांव का एरिया है.
8: फैसिलिटी होनी चाहिए, कैमरे ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं,
9: जिससे हम लोगों को एक एक घंटे वेट करना पड़ता है, तब जाके बस आते हैं. उसमें भी बस आए हैं, आदिति महाविद्यालय से आए हैं, वो गाँव का एरिया है पूरा, मतलब आउटर एरिया.
0: From Jamui to Delhi, the geography changes, but the fear remains. Women shouldn't have to calculate risk just to move through public spaces.
10: Years and after years, nothing really has changed on the ground, and the Kalkaji incident and the Jamui and several others are a point to prove that women's safety is still a lip service in this country. With video journalist Ajay Kumar, this is Shreya Chatterjee for India Today.
11: From India's Kabaddi team, serving a reminder that they are the best in the business, to the women shooters hitting the bullseye yet again, the Indian athletes have had a fruitful day at the ongoing Asian Games in Japan. Let's take a closer look at some of the glorious moments from today's action. India's Kabaddi men continue their dominance in Asian Games. The defending champions held off a spirited Iran side, winning the final 40-34. It was a close contest midway through the summit clash before India turned on the power in the closing stretch to seal the win. It's a 9th Asian Games gold for India in the sport, a streak that remains unmatched. Prior to the men's team gold, it was the women's team that got their hands on the gold medal. They beat Iran 37-34 in a hard-fought final to retain their Asian Games crown. India raced to a 22-16 lead at the break, but Iran hit back hard in the second half, edging 18-15. It wasn't enough to close the gap, though, as India held on for the gold. Meanwhile, Savan Barwal delivered a stunner on the marathon course. The army man from Himachal Pradesh ran the race off his life to claim silver at the Asian Games, smashing his own national record in the process. Barwal clocked 2 hours 11 minutes and 37 seconds to seal a stunning silver. It's a historic moment for Indian athletics, the country's first Asian Games marathon medal 1982. The try of the Lothama Sen, Vidarsa Vinod and Ashi Choksi claimed silver in the women's 50-meter rifle three-position event. India aggregated 17.63 to finish second on the podium, with China taking gold. Kazakhstan rounded off the podium with bronze, scoring 17.54. Joshna Chinnappa and Velavan Senthil Kumar settled for bronze, going down to Hong Kong's Tang Ming Hong and Lee Kai in a tense semi-final. The Indian duo lost the nerve-wracking match 11-10 to 11-11-10, falling agonizingly short of a place in the final. In a proud moment for India, the women's Kabaddi team has clinched gold at the Asian Games in Japan after defeating Iran in the final. In an exclusive interview with India Today, Captain Pushpa Rana and Pooja Kajla shared their emotions after securing the gold medal for Team India. Let's hear what the champions had to say.
5: जापान में एशियन गेम्स हो रहे हैं और अगर हम एक इवेंट की बात करें या फिर हम एक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात करें जिसका नाम है कबड्डी, उस खेल में भारत का कोई सानी नहीं है. जहां जहां भी भारतीय टीम जाती है वो पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी होती है, यानी कि नंबर वन पोजीशन पर. इस वक्त मेरे साथ कबड्डी टीम की दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी पुष्पा और पूजा है. पुष्पा टीम की कप्तान है, तो शुरुआत पुष्पा जी से ही करते हैं. पुष्पा जी, इस बार जापान में ये जो टीम है, आई थिंक वो इसी सोच के साथ गई थी कि जो हमने 2018 में किया, जो हमने चाइना के हैंगझोउ में किया, वही हमें जापान में भी करना है, यानी कि गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं चाहिए.
12: हाँ जी, जैसे आपने बोला कि टीम वैसे ही माइंड सेटअप से उतरी थी और लिटरली हमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी. हम 2-3 महीने से कैंप में ही थे और इस चीज के लिए हमारे कोचिज ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी फेडरेशन ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और हमेशा से कबड्डी पहले से भी बहुत ऊपर रही है और हमारा अभी भी यही प्रयास था कि हम अपना जो मेडल है वो कंटिन्यू रखें.
5: बिल्कुल बिल्कुल. और पूजा, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडर्स का भी रोल बहुत कमाल का होता है और चूंकि हम ये देखते हैं कि कबड्डी कैसा खेल है जहां पर दिमागी तौर से भी बहुत मजबूत होना है और सेकंड्स में डिसीजन लेना है कि कब किसको कहां पर बस टच करके भागना है. क्या कुछ चलता है जब आप मैट पे उतर जाते हो अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज जान लगा देनी है अपनी टीम के लिए?
13: सर, टीम गेम है तो इसमें डिफेंस भी जरूरी और रेडिंग जरूरी है, पर डिफेंस कैसा भाई, अपोजिट वाली टीम के रेडर को सेफ भी निकाल सकता, पर वहां रेडर को डिसाइड रेड आती है तो डू और डाई तो करना ही पड़ता है. उस टीम में ज्यादातर टीम की वीकनेस, मतलब जहां वीकनेस होती है वो ज्यादातर देखा जाता है, उसी जगह पे अटैकिंग वगैरह किया जाता है.
5: अच्छा, क्या हुआ ना जब सुबह सुबह आप लोगों का मेडल आया तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि भारत की ये जो मेडल टेली है उसमें गोल्ड और कब ऐड होगा. ठीक है, शुरुआत की थी विमेन्स टीम ने क्रिकेट में मेडल से और आज दोबारा जो है हमें जब तिबारा एक्चुअली मेडल मिला सुबह, तो वो भी हमारी देश की आप जैसी विमेन्स एथलीट्स ने हमें दिलाया है कि ये गर्व का पल होता है. शायद आप लोगों को भी इस बात की अनुभूति होती होगी कि हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसी लेवल पर आकर देंगे जो पूरा देश हमें यू नो चाहता है हमसे एक्चुअली.
12: हाँ जी, हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब हम इस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं. लाइक हमने इस चीज के लिए हार्ड वर्क किया है तो हम वो चीज कर पा रहे हैं और अपने देश के लिए जो है मेडल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. तो लिटरली ये बहुत प्राउड की बात है हम सबके लिए भी.
5: अच्छा, ये ईरान से ऐसा क्या आप यू नो भारतीय टीम का है कि अक्सर हम यही देखते हैं कि हमारे सामने फाइनल में ईरान की टीम पहुंच जाती है और हम उसे हरा भी देते हैं.
12: सर, अभी लास्ट टाइम जो एशियन गेम हुआ था उसमें चाइनीज ताइपाई ने बहुत अच्छा किया था, फाइनल में वो आए थे. और अभी हमारा जो पुल का मैच है वो भी ईरान के साथ आया था. ईरान हमेशा ही हमारे साथ बहुत फाइट का मैच खेलते हैं लिटरली, बट हम उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमें प्लानिंग के साथ ही उतरना है और टीम को ऊपर लेके ही चलना है.
5: अच्छा, अभी अभी हमारे जो है मेन्स टीम, उन्होंने भी ईरान को ही हरा कर गोल्ड मेडल जीता है. तो ये एक प्लानिंग थी कि ये कोइंसिडेंस है कि भाई अगर हराएंगे तो ईरान को ही हरा के दोनों दोनों टीमें वो गोल्ड मेडल लेंगे.
12: वैसे सच बताए तो हमें ईरान को हराने में ज्यादा मजा है.
5: अच्छा, कैसे, क्यों ऐसा? चाइनीज टाइपिंग को भी
12: आपने लास्ट टाइम जो कंपटीशन हुआ था तो ईरान के साथ हमारा मैच नहीं हुआ था लास्ट वाले एशियन गेम में. तो अभी वाले एशियन गेम में हमें ऐसा था कि इनके साथ ही मैच जाए और इनको ही हरा के हम जाए.
5: अच्छा, शुरुआत कबड्डी की भारत से ही हुई थी और अब जो है ये यू नो देखिए आप एशियन कंट्रीज में भी कितना, भारत के अलावा बाकी कंट्रीज में भी बहुत खेला जा रहा है. तो आपको भी तो बहुत गर्व होता होगा कि यार हम उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उस स्पोर्ट के लिए हम अपना खून पसीना बहा रहे हैं जो जिसकी शुरुआत ही हमने की थी. तो ये भी एक प्राउड मोमेंट होता होगा आप सभी लोगों के लिए.
12: हाँ जी सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि पहले जब से देखते आ रहे हैं ना तब से कबड्डी की इतनी वैल्यू भी नहीं थी. प्रो कबड्डी की वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है कबड्डी. और अभी क्रिकेट के बाद मैं बोलूंगी तो कबड्डी बहुत ऐसी हाईलाइट मोमेंट पे है कि हमें लिटरली बहुत अच्छा लगता है.
14: Watching India Today.
15: Five distinct faces, one common purpose. India informed and ahead, where the South finds a voice. Super Six. Sharp questions, zero distractions.
16: You also speak of poor children. Kangana ji, one can always draw analogies sitting high in ivory towers.
15: To the point, the nation's agenda, nothing else matters.
17: There are some who say Pakistan may not be on the verge of breaking. Our Pakistan army is unable to control the situation.
15: India first, where decades of experience speaks.
18: So you want to raise your voices, but what do you want to see?
15: News Today, exclusives that shape the headlines.
19: Southern states all unite saying that this is unfair on them.
15: News Track, every defining moment, every story that matters. The team that always speaks for you, because you matter.